मांगने वाले खाली ना लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी।

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're a tune into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: Radhe, tu bada bhagini, kaun tapasya ke? Teen lok taran taran, so tere adhi.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन,
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुधाबी में हुई बैठक डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख

0: के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसी दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, बीच में हम रहते हैं।
0: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
2: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
3: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जा अब्दुल।
0: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
0: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
3: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
0: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मनोज शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57th GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manoj Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, connectivity.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी में सिर्फ एक इंसान है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकता है, जो हर एक असंभव को भी संभव कर सकता है, हर एक प्रयास को नामुमकिन से भी मुमकिन कर सकता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप इकलौते हैं। हाँ जी, कहते हैं ना जीवन में सिर्फ अगर एक इंसान पर आपने भरोसा कर लिया तो वो इंसान आपको ज़िंदगी में हर मुकाम तक पहुँचा देगा, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो सिर्फ खुद से कीजिए मेरे दोस्त। हेलो जी, वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग। 8:20 हो गए हैं, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है आज। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है यार, इस गुरुवार का दिन है, थर्सडे की सुबह है, और अभी टाइम की बात कर रहे हैं तो 8:21 हो रहे हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी में। आपने ट्यून इन कर लिया है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल आपके? शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। 8 अक्टूबर 2026 वक्त हुआ है 8:21:15 आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आज का मौसम बहुत औसम है, क्या कहता है आज का वेदर, आज के मौसम के हालचाल थोड़ी देर में जानेंगे। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे तो यकीन मानिए सब कुछ आप ज़िंदगी में बेहतर कर पाओगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, टिके रहिए, और अभी सुनते रहिए आपके शहर का अपना FM मुरादाबाद रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए 9837896896 पर। अभी एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आपकी रेडियो पर निकाल रहा हूँ मैं, इसको इंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप आनंद के साथ हैं, ढेर सारी बातें आपके साथ होती हैं। और फिलहाल घड़ी में वक्त मिलाइए 8:31:16 हो रहे हैं जी। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सारे इन संदेशों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं देखिए, हर दिन की सुबह एक जैसी नहीं होती है, हर दिन का सूरज एक जैसा नहीं होता है, है ना। कभी बादल होते हैं तो कभी कड़क धूप होती है, तो कभी बहुत तेज़ों की धूप होती है, तो कभी हल्की फुल्की गर्मी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी होती हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, है ना। मतलब कभी बाहर आ जाती है लाइफ में, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कभी आलस आ जाता है, कभी नींद पूरी नहीं होती है, तो कभी ज़िंदगी में कुछ और ही रोना चल रहा होता है। तो लाइफ है, लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रगल्स आते रहेंगे, बट आप जो भी कर रहे हैं उसे आप मन लगा के कीजिए, यकीनन वो काम सक्सेसफुल होगा। और बस एक बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी आदत को बनाने में बड़ी आसानी होती है दोस्तों, लेकिन जब उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब एक पेड़ को अगर आप किसी गमले में लगा के एक महीने के बाद उखाड़ोगे तो बहुत ईजिली वो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे 10 साल बाद निकालोगे तो बहुत मुश्किल आपको पड़ेगी, हो सकता है वो पेड़ ही आपको कटवाना पड़े, है ना। तो वही चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, आदतें। अगर आप उन्हें जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी अगर आप छोड़ दोगे जो बुरी आदतें हैं, तो आप बहुत कम्फर्टेबल और रिलैक्स फील करोगे। लेकिन वही आदतें आपने बहुत लॉन्ग टर्म चला दी तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी हैबिट को बदलना। कहते हैं ना, अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तो चीज़ें आपकी अब तक पहुंच नहीं पाएंगी जो आप चाहते हो करना। तो इसीलिए समय रहते ही चीज़ों को सेट कीजिए एंड छोटे छोटे प्रयास कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन पर काम करना शुरू कीजिए, यकीनन आपका काम बहुत अच्छा होगा। हमारे पास मैसेज पहुंचा है मनप्रीत का, लिखते हैं, आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे गाने आपने प्ले किए हैं आज सुन करके, मज़ा आ गया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा मुझे भी लगा आपने ये मैसेज किया, थैंक यू सो मच। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, ये ओमानी मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हालचाल है। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, सूर्यनगर से मैसेज करती हूं, मेरा नाम साक्षी है। गुड मॉर्निंग जी, सर गाने अच्छे लगते हैं आपके, क्या बात है जी, थैंक यू। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, मेरा भी मन एकदम प्रसन्न हो गया है, थैंक यू सो मच। मोस्ट पॉपुलर ट्रैक आपके रेडियो पे निकल गया है, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आप फटाफट मैसेज पहुँचाओ यार 9837896896 पर, इंतजार कर रहा हूँ मुरादाबाद आपके मैसेज के।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय,
4: बिंदास मॉर्निंग
1: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
4: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
5: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

मोस्ट रोमांटिक ट्रैक दिलवाले फिल्म 1994 में आई बहुत ही पॉपुलर गाना शानू दाल का याग्निक की आवाज साथ में भाना दिल दार ओए होए होए सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार क्या सॉन्ग है यार सुबह सुबह करता रहूंगा प्यार ऐसी मोहब्बत अपने काम से हो जाए ना तो मजा आ जाए यार

क्या बातें श्रोताओं, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। वक्त हुआ है 8:51, ये है गुरुवार की मॉर्निंग। सुप्रभात लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन प्रोग्राम। श्रोताओं आपको बता दें, 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को, एंड भारत फ्लाइट सोसाइटी फाउंडेशन का सदस्य बना आज ही के दिन 1998 को 8 अक्टूबर के दिन। वहीं आपको बता दें आज ही के दिन दिव्या जी का जन्म हुआ था जो भारत की फ्री स्टाइल महिला पहलवान है, 1998 को आज ही के दिन। और इसके अलावा आज ही के दिन एक और बहुत ही खूबसूरत जाने माने एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में बात करना बनता है। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं बालकृष्ण आचार्य जी, 1931 में इनका जन्म हुआ। आपको बताते चले 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है वन जीव सप्ताह दिवस। एंड इसके अलावा आज एक और बहुत ही स्पेशल दिवस जो है वो मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है श्रोताओं आज ही के दिन। इसके अलावा और भी तमाम सारे ऐसे दिवस हैं जो आज मनाए जाते हैं, और हर दिन की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होती है, हर दिन का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ विशेष रहता ही है इतिहास के पन्नों पर।

तो चलिए श्रोताओं, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी हमारे साथ आज की इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आपको बताते चले, 1932 में भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुई थी श्रोताओं, और हर साल इसी उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप साझा कर रहे थे। किसके साथ भैया? मैं साझा कर रहा था अपने श्रोताओं के साथ। हाँ जी श्रोताओं, आप भी अपने प्यार की बातें, अपने दिल की बातें हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। आपको हमारा गीत संगीत अच्छा लग रहा है और आपको क्या प्रोग्राम में अच्छा लग रहा है ये आप बता सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके 9837896896 पर। हमें वेट रहेगा आपके अच्छे अच्छे संदेशों को, और ढेर सारे लिसनर्स ढेर सारी बातों के साथ सुबह सुबह हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आ गए हैं, तो बिल्कुल हम आपके संदेशों को ज़रूर शामिल करेंगे। थोड़ी सी देर में एक और मोस्ट पॉपुलर ट्रैक आपके रेडियो पर निकाल रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग ट्रैक, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड इस गाने को सुनते ही आप फ्लैश बैक में पहुँच जाओगे। हेमा मालिनी, लता मंगेशकर की आवाज़, हेमा जी पर पिक्चराइजेशन, राजेश खन्ना साथ में नजर आए, ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा गाना, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। एंजॉय करते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: था मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
8: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
9: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
10: वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को और इस वक्त घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 9:56। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की जीत एक ना एक दिन हो ही जाती है ना। जिंदगी में आप कितनी भी अच्छी चीजें कर लें उसके बारे में कोई इंसान याद नहीं रखता, लेकिन आप एक बुरी चीज करो उसके बारे में हर कोई याद रखता है, क्योंकि बुराई में इतनी कहते हैं ना नेगेटिविटी होती है कि मतलब वो इंसान के एकदम से ना जहन से जा नहीं पाते। इसलिए कोशिश करें कि अपनी तरफ से पॉजिटिव करते रहें, और जब आप अच्छी चीजें करते हैं तो यकीन मानिए वो वेस्ट नहीं जाती हैं, एक ना एक दिन उनको जो है लौट कर आपके पास आना होता है और कई गुना करोड़ होकर आपको मिलती है। इनफैक्ट उसकी जो रिजल्ट होती है ना वो भी बहुत पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए आप हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या वो चीजें हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं, आज की सुबह आपको बताने वाला हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।
11: मुखड़े पे काला काला चश्मा,
10: आने वाला गाना जरा से देर में एंजॉय करेंगे आप, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक।
11: मुखड़े पे काला काला चश्मा,
10: माय गॉड हो रही है दिस इज माय लास्ट आवर सेकंड आवर की शुरुआत।
11: मुखड़े पे काला काला चश्मा,
10: अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज के और कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में। मुरादाबाद में क्या स्पेशल चल रहा है? कल रात को जो आग लगी है मुरादाबाद में स्टेशन के बाहर, आपने देखा वो वीडियो, यानी सोशल मीडिया पे कितना ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना तो बनता है यार आज के शहर में। शहर में क्या चल रहा है आसपास में वो भी मैं आपको बताने वाला
11: हूँ। काला काला चश्मा,
10: साई मंदिर रोड के पास में ना एक ट्रक जो है गड्ढे में फंस गया एंड उसको लेकर के भी बड़ा बवाल मचा। अगर उस पर आपने नहीं गौर किया तो मैं बताने वाला हूँ आपको, कहाँ अच्छा चल रहा है कहाँ क्या चल रहा है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ आपके रेडियो पर। लेकिन सुबह सुबह कोशिश होती है कि सारी पॉजिटिविटी आपको दी जाए रेडियो के माध्यम से। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप करके जरा फटाफट बताना मेरे एक क्वेश्चन का आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे ये बताओ मैसेज करके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको सुखाती है लेकिन खुद गीली हो जाती है, क्या आपको बताया उसका आंसर? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो 9837896896। अगेन रिपीट कर दूँ क्या? ठीक है, वंस अगेन रिपीट करूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको तो सुखा देती है लेकिन खुद गीली हो जाती है? अगर आपको पता है इसका जवाब तो मेरे को मैसेज करो यार 9837896896 पे। आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो आज की सुबह, अगर आपको पता है इसका जवाब तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज ही करेंगे 9837896896 पे। आप इमीडिएटली मेरे को मैसेज करो, मैं लौट कर आ रहा हूँ अभी के अभी जरा सी देर में। अभी आने वाला एक गाना ज्योति के तागड़ी की आवाज़ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है थर्सडे की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन सुन रहे हैं आनंद को, एंजॉय करते रहिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, लौट कर आता हूँ जरा सी देर में। डोंट गो एनीवेयर, कहीं जाम लगा है तो प्लीज़ बताओ मुझे।

0: मैं भी यही बोलता हूँ, अपने बेड से सुबह सुबह उठकर आता हूँ, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, फिलहाल तो अभी नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरा घर भी तो मेरा इंतजार करता है ना। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और मैं जल्दी वापस जाऊंगा ताकि जो रात की नींद बची है ना वो पूरी कर पाऊँ। हाय वेलकम बैक, अभी आपने गाना सुना बॉर्डर टू से, बहुत ही अच्छा गाना, मैं मतलब इतना बढ़िया गाना है, घर कब आओगे, इतने अच्छे लोगों ने इसको गाया है, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ, इतना बढ़िया गाना, मूवी देखी है नहीं आपने, आई डोंट नो, बट सीरियसली बताऊँ गाना बहुत ही कमाल गाया है इसका, और इसमें और भी गाने हैं जो बहुत प्यारे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सभी का वार्म वेलकम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखो भाई साहब, जिस दिन आप मुस्कुरा नहीं रहे ना वो दिन सिर्फ आप बर्बाद कर रहे हो, आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब पूरे दिन में यार एक बार तो हंस ही सकते हो, कौन सा आपने उसमें टैक्स देना यार, हंस लिया करो, हंसना बहुत जरूरी है। 9:12 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, WHO की एक नई रिपोर्ट आई है, एक नई रिसर्च में पता लगा है कि भैया मोटापे को घटाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये चीज़। एंड ऑफ कोर्स यार, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट मुझे लगता है कि जब कोई अच्छी और बेहतरीन रिसर्च आती है तो मैं डेफिनेटली आप तक पहुँचा देता हूँ। एग्जैक्टली, सो देखो बच्चों में, इनफैक्ट बच्चों में नहीं, जो आजकल के यंगस्टर हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को काफ़ी मिल रही है। एंड मैं बात करूँगा बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोटापे को लेकर, WHO ने पहले एक गाइडलाइन जारी की है। एंड आपको बता रहे हैं WHO ने खास तौर पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वजन घटाने वाली दवाओं या सर्जरी की बजाय संतुलित डाइट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि भैया जितना हो सकता है ना बच्चों को जो हेल्दी डाइट है वो दी जाए, नियमित रूप से जो उनको फिजिकली एक्टिविटी कराई जाए और उनके व्यवहार में जो है थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की जाए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है WHO के मुताबिक माधुरी जी की, 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं इनमें मोटापे की जो शिकायतें कुछ ज़्यादा ही निकल कर आ रही है। एंड ऐसे में जो है इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है उनकी डाइट का, उनके लाइफस्टाइल का, अगर आप उनका लाइफस्टाइल अच्छा करोगे, उनका डाइट हेल्दी रखोगे तो डेफिनेटली वो मोटापे की शिकार होने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इनफैक्ट लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भैया पर्याप्त जो है इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी दिखता है, एंड अगर आपका लाइफस्टाइल बदलता है तो आपकी चीज़ें भी बदल जाती हैं। वहीं गंभीर मोटापे के मामले में शारीरिक और मानसिक रूप से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी बच्चों को हो सकती हैं, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका खान पान सही रखें, उनको शारीरिक गतिविधियाँ कराते रहें और लंबे समय तक जो है उन्हें बिल्कुल एक ही चीज़ पर फोकस ना रखें, उन्हें कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराएं, उन्हें बाहर लेके जाएँ। ये चीज़ तो मैं भी कहता हूँ, फोन में बच्चों को लगाने की बजाय उनको जो है बाहर की दुनिया दिखा के लाओ यार। सुबह सुबह आपको बता रहे हैं, आज 8 अक्टूबर की मॉर्निंग है, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें चल रही हैं, मुरादाबाद के अंदर भी क्या चलने वाला है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा वो। एंड भारतीय वायुसेना आज 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट करता है, IAFD 2024 से मना रही है। दरअसल आपको बता दें एक्चुअली 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, एंड इसके अलावा इसी यादगार और ऐतिहासिक दिन को जो है उसको याद करने के डे में इसको हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वायुसेना दिवस इसको जो है मनाया जाता है। एंड एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हर दिन होती हैं, हर दिन की शुरुआत कुछ अच्छी चीज़ों से होती है। और अभी आपको बता दें, जो लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, जिनको बहुत प्रोटीन लेने का शौक है, जो जिम वगैरह जाते हैं एंड जो अपनी डाइट में प्रोटीन को बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि भैया प्रोटीन जो है वो आपको थोड़े से सस्ते मिलने वाले हैं। हाँ जी, मतलब इसके ऊपर जो है हाईकोर्ट ने टैक्स लगाने से इनकार कर दिया है, तो जो आपका ये प्रोटीन पाउडर है जो आप लेते हैं, ये जो आप वर्कआउट से पहले लेते हैं, ये अब थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। चलो जी, तो अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए, फिलहाल ऐसी अच्छी खबरों के लिए ट्यून इन रहिए। एंड कल रात को रामलीला में क्या हुआ वो लाइव अपडेट आपको देने वाला हूँ, रास्ते में लौट कर आता हूँ। एंड इसके अलावा और क्या चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे, फिलहाल आपके मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं ताबड़तोड़, थैंक यू सो मच। बाकी और कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ जरा सी देर में, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ मुझे व्हाट्सएप करके 9837896896। मैं अमीटू से कि कहीं अगर ट्रैफिक लगा है तो भी आप मुझे बता सकते हो, कहीं जाम में हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, अभी आज एक और खास चीज़ पर बात करने वाला हूँ अभी, ड्रोन क्यों नहीं वेयर। आज की सुबह मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, आप मुझे मैसेज करके बताओ, आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको तो गीला कर देती है बट खुद सबको सुखा देती है, खुद गीली हो जाती है। एग्जैक्टली, कभी कभी हो जाता है यार। हाँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको सुखाती है लेकिन खुद गीली हो जाती है। अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो मुझे मैसेज करो 9837896896 पे, वक्त वक्त घड़ी घड़ी मिला लो। 9:16 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहाँ भी निकल रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, आप घर पे सुन रहे हैं, आप किचन में सुन रहे हैं, आप गाड़ी में सुन रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, तो बाबा थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है आसपास का, है ना। बाकी ईयरबड्स लगा के आप सुन रहे हो आई नो दैट। कौन सी बॉलीवुड एक्टर है जिनकी घर में एक और जो है एक बेबी आया है, बहुत ही पॉपुलर जोड़ी है बॉलीवुड की, 35 की उम्र में जो है दूसरी बार ये पेरेंट्स बन गए हैं। दिस इज वेरी वेरी लकी पेरेंट्स। किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल की लिमिट जोड़ी है। लौट के आते हैं, लोकल फूड वोकल पे बात करते हैं ना, अभी क्या चल रहा है अपने शहर में। बाकी आप कहाँ जा रहे हो ये मुझे बता सकते हो, 9837896896 पर आने वाला गाना अरिजीत सिंह नेहा कक्कड़ की आवाज राता मूवी से, ये है थर्सडे की सुबह। इंस्टाग्राम पे अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप यूट्यूबर हो, तो आपके लिए कुछ चीजें चेंज हुई हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहो ऐसे ही। एंड बाकी कुछ इन्फ्लुएंसर मैं भी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, जिनकी पेजेस पे आप जाके देख सकते हो क्या कमाल का कंटेंट होता है यार। जो मैंने आइडेंटिफाई किया तो मुझे कुछ कंटेंट बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा, उनके बारे में बात करते हैं ना अभी। सो कहीं मत जाओ, वापस आ रहा हूँ। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: देखो यार, मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया है आज की मॉर्निंग, एंड ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे हैं। मैं बस अभी जरा सी देर में लौट के आऊंगा तो आपके सारे मैसेज शामिल करूंगा। जोरदार तालियां यार, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मैं कह जी सुबह सुबह ऐसी बातें कराने के लिए ना आप मुझे मजबूर कर देते हैं। एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो भाई।
3: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, हाय हाय, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल।
0: बहुत ही बढ़िया। चलो जी, आप जहां भी हो ऐसी ट्यून इन हो मेरे साथ और कहते रहो दिल से जियो बिंदास। आने वाला गाना एंजॉय करो मेरे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लौट कर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: ये गाना सुन के ना मैं सच बता रहा हूँ, आधे लोगों का ना मतलब अंदर से जो है ना ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, बिकॉज इतने ढींचाक गाने ये होते हैं जिनको सुन के मजा आ जाता है। हेलो हेलो, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग जी, वक्त मिलाओ 9:23 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली आपसे इस स्टेशन पे हो और बहुत सारे लोगों ने क्या ताबड़तोड़ मैसेज किए यार आज की सुबह। इतने बढ़िया मैसेज आप लोगों ने किए, मैंने आपसे पूछा था यार बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सबको सुखाती है लेकिन खुद गीली हो जाती है। बॉस

आई नो दैट यार, एंड मैं कुछ आपको रिकमेंड करूंगा आज की सुबह, तो आप डेफिनेटली जाके देखना, सर्च करना, आपको बहुत अच्छे कंटेंट लगेंगे। एंड ये मैं क्यों कर रहा हूँ आज के दिन, क्यों मैं इस पे बात कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यार, आनंद ऐसे तो कुछ नहीं बोलता है, वो जब रेडियो पे आता है तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के साथ ही वो आता है। एंड ऑफकोर्स अभी आएगा कुछ बढ़िया वाला आपके लिए गाना, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। ये एसकेआर आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है एक बार फिर से पेरेंट्स बन गए, एक और मेहमान उनके घर आया है। कंग्रेचुलेशन, व्हाट अ जोड़ी यार, क्या लगती है इनकी जोड़ी। अभी आने वाला गाना आपकी सुबह को थोड़ा सा अमेजिंग बनाएगा, ये आने वाला गाना। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। और अगर देखो भाई आप रामलीला में नहीं जा रहे हो तो उसकी लाइव कड़क अपडेट आपको दूंगा। एंड इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अच्छी चीज है, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हो या आप कर रहे हो, यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप काम करते हो, आई मीन इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया, तो आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और काम की खबर लेकर आया हूँ। सो प्लीज ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहो, कहीं मत जाओ। कुछ कहना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे, मुझे इंतजार है आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप का। एक सवाल भी पूछा है मैंने आपसे, आने वाला गाना परचाई जी, आज जो आपने पहना है ना, बड़ा सूट सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर।

साथ में एंजॉय करो जी, कहीं मत जाओ, रेडियो के सुई बिल्कुल मत घुमाओ, अभी लौट के आता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्या होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल, एंड यूट्यूब की भी कुछ नई गाइडलाइन आई है 2026 की, वो भी शेयर करूंगा। सो डोंट गो एनीवेयर, कहीं जाम वाम में फंसे हो तो यार बताओ मुझे मैसेज करके 9837896896। पर आज की इस बार पूछ रहा हूँ आपसे एक क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको सुखाती है मगर खुद गीली हो जाती है।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
4: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

ना कोई ना एंजॉय किया, बहुत ही बेहतरीन गाना। सच बताऊं तो यार भूल चूक माफ का ट्रैक वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट। मतलब अभी हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस गाने को, लेकिन गाने ने जो जगह बनाई ना दिलों में बहुत, मतलब कमाल का गाना यार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6। मैंने कहा जी घड़ी मिलाओ यार, 9:35 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। आनंद के साथ हैं आप, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। नहा धो के परफ्यूम मार के आपके रेडियो सेट पर मेरी आवाज सुनाने के लिए मैं आ जाता हूं मंडे टू सैटरडे। लेकिन यार जो भी बोलो कोई ना, मतलब अगर कंपैरिजन की बात तो खैर कभी करनी नहीं चाहिए, लेकिन यार माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता यार। मम्मी के हाथ में जो स्वाद है ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया के कहीं किसी भी कोने में पहुंच जाओ वो स्वाद आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब माँ के हाथों का स्वाद अलग ही होता है यार। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था रामलीला की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ फटाफट से। आमिर से कि क्या चल रहा है आपको बताया ना, 5 अक्टूबर से अपने मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में एक भव्य मेले एंड साथ में रामलीला का जो है शुरुआत, उसका आयोजन जो हो रहा है उसकी शुरुआत ऑफकोर्स हो गई है 5 अक्टूबर से। और रामलीला ग्राउंड में अगर आप दशहरा मेला देखने आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले रामलीला देखने आओ, बहुत ही अच्छी रामलीला चल रही है। मैं अगर कल रात की बात करूँ तो रात जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ भगवान श्री राम ने जो है बुराई पर अच्छाई की जीत करी, तारका का वध किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है राम जी का एक खूबसूरत अवतार जो है दिखाया गया है। इसके अलावा आज जो है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं, एंड इनफैक्ट राम विवाह भी आप देख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो रामलीला में देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं, तो अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो ज़रूर आना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा अपने छोटे बच्चों को ज़रूर लेकर आओ यार, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपना जो ये एक कल्चर है जो चलता आ रहा है सदियों से हमारे पूर्वजों के टाइम से, बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ की नॉलेज अपने बच्चों को भी होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो जो अपनी चीज़ें हैं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों को ज़रूर मोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलो जी, और बाकी यही डिटेल्स जो है आप चेक आउट कर सकते हो हमारे एक प्यारे इन्फ्लुएंसर्स के पेज पे जाके। ऐसी तमाम सारी रील्स क्या चल रहा है शहर में, एक्टिविटीज़ एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम पेज जो मुझे लगता है जिनमेंली वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सो यू हैव टू गो एंड चेक आउट मुरादाबाद डायरी। एक अच्छा पेज है, सोशल मीडिया हैंडल है इसका, आप जाके डेफिनेटली देखो। मैं भी कई बार वॉच करता रहता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं कॉन्टेंट, सो यू हैव टू गो एंड चेक आउट। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप वहाँ पर देख पाएंगे, अपने लोकेलिटी में क्या चल रहा है, क्या स्पेशल हो रहा है। तो आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर है ना मुरादाबाद में, ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं यार, नो डाउट। इन लोगों की वजह से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ ही जाती हैं। अब देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप हैं तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें तो आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन एक बार इनके लिए भी बहुत ही सही काम कर रहे हैं बॉस। लेकिन ये जो पेज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करिए, आपको बहुत सारी अच्छी और जेन्युइन कंटेंट के लिए वहाँ पर अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आपको अभी बता देते हैं एक और खास अपडेट। 2026 में अगर आप YouTube या Instagram कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2027 में ना अभी कुछ चेंज होने वाले हैं। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या चेंजेस हो रहे हैं मैं फटाफट से आपको इनकी गाइडलाइन बता देता हूँ। देखिए मोनेटाइजेशन के लिए अभी कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ध्यान से आपको ज़रा इन बातों को सुनना है। फिलहाल अभी तक तो इसमें कोई चेंज था नहीं, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 2027 में जो है फरवरी से नए क्रिएटर्स के लिए बिल्कुल एक नया एड रेवेन्यू पार्टनर प्रोग्राम ये लोग लेकर आने वाले हैं, जिसमें 8000 घंटा वॉच टाइम आपको चाहिए होगा, इनफैक्ट 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज भी आपको चाहिए होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप 2027 में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो भैया आपको 8000 घंटे का वॉच टाइम, ओ माय गॉड, एंड 2 करोड़ शॉर्ट पर आपको व्यूज चाहिए होंगे। एंड ये घोषणा हालांकि अभी 2026 में हो चुकी है, जबकि पुराने क्रिएटर्स पर यह बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो यूट्यूब या फिर इन्फ्लुएंसर अगर आप हो, अगर आप यूट्यूब पे कॉन्टेंट क्रिएट करते हो, सिर्फ यूट्यूब के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है अभी। मतलब ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं बेसिकली ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो 2027 में ये रूल्स जो है लागू होने वाले हैं, जिसमें 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं, अब आपको 8000 घंटा वॉच टाइम देना पड़ेगा। ओ भाई क्या ही हो रहा है। चलो जी, फिलहाल अगर आप काम करने वाले हो यूट्यूब की दुनिया में तो ऑल द बेस्ट, हमें भी लिंक शेयर कर देना। मेरा इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद के नाम से, आपको मिल जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, सो फटाफट वहाँ पे आप हमें ढूंढ सकते हैं। अभी एक अच्छा सा गाना और आपने जो मैसेज किया उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, वो मैसेज मैं डेफिनेटली अभी शामिल करने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आने वाला गाना रवि अवस्था भैया से, आतिफ असलम साहब की आवाज़ श्रेया घोषाल देंगे साथ, दिस इज अमेजिंग सॉन्ग। ये ट्यूसडे की सुबह है एंड एक खास बात आपको बतानी है, आज कौन कौन से स्पेशल डेज मनाए जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल, ये भी हम बात करेंगे 8 अक्टूबर की सुबह। आप सुन रहे आनंद को, कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करो 9837896896 पर, मैं आपके साथ बना रहूंगा 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल के लिए वॉल्यूम बढ़ा के इस गाने को एंजॉय करो, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक आपके रेडियो पर आ रहा है।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

दोस्तों, अभी जो आप गाना सुन रहे थे वो वेलकम मूवी का था, होठ रसीले। और इसी गाने के ज़रिए हम नाना पाटेकर को भी एक बेहद ही यादगार और मज़ेदार छवि में जो है हमने उनको देखा, और उनकी याद भी आ जाती है इस मूवी को देख के। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की सुबह बेहद ही दुखद भी है। जब सुबह सुबह हमें घटना मिली, तो मतलब इस घटना की सूचना मुझे मिली कि ऐसे ऐसी चीज़ हुई है, मतलब बड़ा दुख भी हुआ। कोई ऐसा अचानक से ऐसा कोई धांसू धाकड़ एक्टर हम सभी के बीच से अचानक से चला जाए, तो देखिए दुखद की बात तो है ही। खबर जब मैंने सुनी, ऑफकोर्स अभी तक आपको भी पता चली गई होगी, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों, आज की सुबह बॉलीवुड से एक ऐसी ही खबर है जिसने सिनेमा, जो भी सिनेमा के प्रेमी, उनको उदास कर दिया है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच में नहीं रहे। 75 साल की उम्र में आज सुबह गोवा में उनको जो है उन्होंने एक अंतिम सांस ली, उनका आज निधन हो गया है। हाँ जी श्रोताओं, आपको बता दें 5:20 पे सुबह उनको हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। एंड बताया जा रहा है कि वो गोवा में थे जब उनका निधन हुआ, उन्होंने अंतिम सांस ली 75 वर्ष की उम्र में। और मतलब नाना पाटेकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो अपनी आवाज़, अपने अंदाज, अपने दमदार अदाकारी और एकदम ज़बरदस्त किरदार में जान डाल देने वाले कलाकार थे। श्रोताओं, मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत फिल्में उन्होंने दी हैं, एक से बढ़कर एक उनके डायलॉग हैं। और कहते हैं मतलब फिल्मी दुनिया के दिग्गज सितारे जो होते हैं ना, उनकी छवि और उनकी पहचान अलग ही होती है। और एक और ख़ास बात ये भी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, किसी भी कलाकार की खूबसूरती और उसकी जो कलाकारी होती है वो उसके काम के दम पर होती है ना। कलाकार हमारे बीच में होना हो, लेकिन उनकी जो दमदार एक्टिंग है, उनका जो दमदार एक उन्होंने अपना एक वैल्यू बनाया है, वो हमेशा हमारे दिलों में और हमारे जहन में गूंजता रहेगा। ऐसे ही हम आज की सुबह बस नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज उनके जाने से सिनेमा का एक मजबूत अध्याय ख़त्म हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ज़िंदगी है, यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहता है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा, ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जाने के बाद भी लोग आपके बारे में बात करें, आपका नाम लें, आपके बारे में पॉजिटिविटी के साथ आपको जो है वो याद रखें, बस ऐसा कुछ करके जाना चाहिए। फ़िलहाल नाना पाटेकर फैंस को हमारी तरफ से आज हम तो यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके फैंस को इस दुख को बर्दाश्त करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। बाकी दोस्तों, हमारी एफएम मुरादाबाद की तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये बेहद ही दुखद घटना है, मैं हालांकि इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन बस बताना तो पड़ेगा ही ना। जबिंग आरजे, मुझे लगता है कि यार इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। अभी आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। सुबह सुबह का समय है दोस्तों, वक्त हुआ है 9:51।

वेलकम बैक है जी। 9:51 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। एक छोटा सा करेक्ट क्वेश्चन के टाइम, आई मीन एक छोटी सी बात आपसे पूछने वाला हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं एक गाने के जो है ना आपको उस गाने के लिरिक्स हैं, बट मैं शब्दों में आपको बता रहा हूँ, अगर आप पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छा गाना है, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन सा गाना है ये आपको बताना है। मैं इसको शायरी के फॉर्म में बोल रहा हूँ, आपको बस पकड़ के बताना है ये कौन सा सॉन्ग है। ठीक है जी, वॉल्यूम बढ़ा लो अपने रेडियो सेट्स की। बढ़ा ली आपने, वेरी वेरी नाइस यार, वेरी वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग यू नो इतनी शिद्दत के साथ जो है रेडियो सुनते हो और इतनी शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है मुरादाबाद शहर के अंदर बहुत ही हैपनिंग डांडिया नाइट चल रही है, उनके कॉन्सर्ट के पासेज हम आपको दे रहे हैं। अगर आज की सुबह भी आप पासेज विन करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटे से मेरे सवाल का आंसर करना है। अगर आप ये आंसर मुझे कर दोगे तो आप डांडिया नाइट कॉन्सर्ट के पासेस जीत कर जाओगे। तो अगर आप जीतना चाहते हो तो मेरे इस सवाल का आंसर आपने करना है। नहीं नहीं, ये मेरा कड़क क्वेश्चन नहीं है यार। चलो मेरा सवाल है बहुत ही सिंपल, मैं इसको बताता हूं ये क्या है, ये बस आपको बताना है। सुन मेरी शहजादी मैं हूं तेरा दीवाना, सुन मेरी शहजादी मैं हूं तेरा दीवाना, बाहों में लेके करता हूं मैं ये वादा। बताइए मुझे जरा ये कौन से गाने के लिरिक्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। नो गाना नो फिल्मी स्टोरी, कुछ नया है आज की सुबह। हर दिन नई नई बातें होती हैं, नए नए गाने होते हैं, नई नई चीजें आपके लिए लेकर आता हूँ। बताओ मुझे यार, मतलब दिमाग लगाओ कौन से गाने के लिरिक्स मैंने चुरा के शायरी बना दी है। सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा दीवाना, बाहों में लेकर करता हूँ मैं ये वादा। बताओ मुझे। कर लेना जाने के शोर मच जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। सच्ची बात, हर कोई आशिक तुझे तेरे घर तक, ये बात। चलो जी, आप ऐसे सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कौन है आज की शो का लकी विनर थोड़ी देर में आइडेंटिफाई करेंगे एंड बताएंगे भाई साहब किसने जीते हैं डांडिया नाइट कॉन्सर्ट के पासेस। आप ऐसे ट्यून इन हो मेरे साथ, डोंट गो एनीवेयर, लौट कर आना थोड़ी देर में।

0: देखो यार, मुरादाबाद में 11 अक्टूबर से नवीन नगर की रामलीला स्टार्ट हो रही है एंड वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रामलीला होती है। मैं एक दो बार गया भी हूँ वहाँ पर, पिछली बारी भी गया था, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब रामलीला आसपास में होती है, नवरात्रि चल रहे होते हैं तो अच्छे ओकेजन पे, तो और भी मज़ा आता है, मतलब फुल ऑन वाइब देखने को मिलती है ना। इसके अलावा मुरादाबाद में एक और जगह पर रामलीला होती है एंड अभी वो मेरे दिमाग से तुरंत निकल गई ये थॉट, कहीं पर तो होती है बहुत ही यू नो अच्छी रामलीला। एक तो अपने रामलीला ग्राउंड में होती ही है, इसके अलावा नवीन नगर में भी रामलीला होती है। एक और जगह है जहाँ पर मुरादाबाद में बहुत ही भव्य रामलीला होती है एंड मतलब अच्छी रामलीला होती है वहां पर भी। ये मुझे अभी जस्ट निकल गया है माइंड से, बट कोई बात नहीं, अगर आपने किसी को बताया तो आप बता सकते हो। एनीवेज, अगर आप कहीं ट्रैफिक में तो भी आप मुझे बता सकते हो। लेकिन अभी मुद्दे की बात, अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं, अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, तो भैया थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। क्यों मैं ये कह रहा हूं अभी बताऊंगा जब लौट कर आऊंगा। तो मुरादाबाद का जो काली माता का मंदिर है लाल बाग में, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। वहां पर क्या इस बार यूनिक होने वाला है ये भी पता लगेगा आपको। आप बस स्टेशन पे मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, सब कुछ तो यार आपको बताता हूँ मैं। फिलहाल घड़ी मिलाओ, 9:58 हो रहे हैं।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक,
3: अरे पहले लड़की तो ढूंढ लो जनाब।
4: अरे भाई, राज कलेक्शन पे इतना अच्छा वेडिंग कलेक्शन है ना कि मन कर रहा है अभी शादी कर लूं।
5: सहरा सज गया ओए।
6: जी हाँ, आज ही चले आइए राज कलेक्शन। दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं। कोट सूट शेरवानी के साथ साथ
7: 999 रुपए में ब्लेजर और 2 के साथ 1 फ्री का ऑफर भी है।
3: पूरा पता ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बस आपको वही आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही अच्छा एक गाना है, उसको मैंने थोड़ा सा शायरी फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, बस आपको वही घुमा फिरा के बताना है, ठीक है। सातो जन्म में तेरे, ये किसी ने मुझे लिख के बताया कि भैया ये गाना है। क्या सच में यही गाना आपको लगता है ये वो गाना है? ये तो आप ही बता सकते हैं जी। फिलहाल मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि भैया ये गाना है या वो गाना है या फिर यही आंसर है। मैं तो आपको एक शायरी के फॉर्मेट में एक गाने का बीच का पार्ट, उसको अलग अलग तोड़ मोड़ के आपको बता रहा हूँ। अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो तो कोई बात नहीं जी, आपकी प्रॉब्लम है, बाद में पछताओगे बस, क्योंकि हैपनिंग डांडे नाइट कॉन्सर्ट के पास आपको दे रहे हैं। देखो यार, ये आपके हाथ में कि आपको सही जवाब देना है या नहीं देना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बस। लेकिन अगर आप सच में सही जवाब देना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से सुनो। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे करता हूँ मैं वादा। बताइए जरा ये कौन से गाने का बीच का पार्ट है, कौन से गाने की ये लिरिक्स है जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ शायरी फॉर्म में। सुन मेरी शहजादी, वाह वाह वाह वाह, मैं हूँ तेरा शहजादा और बाहों में लेके करता हूँ मैं ये वादा। अगर मुझे एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, बस मेरी मम्मी ना सुन रही हो बात,
5: वो दिक्कत
0: तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल आने वाला गाना वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो। समझ में आया कौन से गाने, तो व्हाट्सएप करो।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: असंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: चलिए जी, नाचते रहिए। और फिलहाल मेरा जाने का हो गया है समय, लेकिन अभी जाने से पहले आपको बताऊंगा क्या है आज का राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले आने वाला गाना भूत बंगला का ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज, देखिएगा बहुत ही अच्छा गाना है एंड प्रीतम का म्यूजिक है, साथ में निकिता गांधी दे रही है साथ। बहुत ही वंडरफुल ट्रैक, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, लौट कर आता हूँ, उसके बाद करूंगा आपको बाय बाय।

0: आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ना एक्चुअली दूसरे हमारे गेस्ट आ गए, उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है ऑफ एयर. बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है स्टूडियो में, एंड सिर्फ रेडियो पे शो ही नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारा काम करना होता है हमें. आपको लगता है बस आते हैं बातें करके चले जाते हैं, ना भाई ना, बहुत काम होते हैं यार स्टूडियो में, एंड अभी बहुत सारा काम मुझे करना है. क्रिसमस के साथ में ना आज 2 बजे तक मैं यहाँ पर ऑक्यूपाइड रहने वाला हूँ यार. मतलब आज का तो बड़ा हैट्रिक होने वाला है, बट कोई बात नहीं यार, आई लव दिस जॉब, आई लव माई वर्क. एक हमारे गेस्ट हैं, वो स्टूडियो में आ चुके हैं, दिल्ली से पहुंच चुके हैं सुबह सुबह पॉडकास्ट कराने. बहुत सारी चीजें करनी होती है यार. चलिए, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा साइनिंग ऑफ. उससे पहले मैंने पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जो सबको सुखाती है, खुद गिली हो जाती है. दिस इज द राइट आंसर, टॉवल. कंग्रेचुलेशन सृष्टि जैन जी, आपने सबसे पहले मेरे को दिया था इसका राइट आंसर, तो हम आपको भी रानी नाइट कॉन्सर्ट के पासेस देकर ही जाएंगे. इसके अलावा मैंने जो भी पूछा था, सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे करता हूँ मैं वादा, इसके भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं. एंड सबसे पहले प्रीतम ने राइट आंसर दिया था, कंग्रेचुलेशन भाई यार, ताली बजाओ बाकी लोगों के लिए. एंड ये गाना स्पेशल प्रीतम आपके लिए आज की सुबह, क्या बात है. प्रीतम, मैं आपको दे रहा हूँ 24 को जो डांडिया नाइट होने वाली, 24 अक्टूबर को वेब मॉल में, उसके कॉन्सर्ट के पासेस मैं आपको आज दे रहा हूँ. आप आओ फैमिली के साथ, बहुत सारा फन करो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन में जो है रंग जाओ. 24 अक्टूबर को डांडिया नाइट होने वाली है, बहुत ही हैपनिंग, आप डेफिनेटली वहाँ आ सकते हैं, मैं ही आपको होस्ट करते हुए नजर आऊंगा. ढेर सारी तालियां बाकी लोगों के लिए. बाकी 13 और 14 को भी बहुत ही अच्छी एक अमेजिंग डांडिया नाइट हो रही है मुरादाबाद में, स्पेशल दिस इज गरबा डांडिया नाइट यार. अगर आप उसके पास भी लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, वो सब कुछ पता लगेगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, तो आप वहां पर आके फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हो. बहुत सारी अपडेट आपको मिलेंगी, कड़क फॉलो कर सकते हो, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता है इंस्टा हैंडल पे. एक टाइम था जब रेडियो पे सिर्फ आरजे को सुनते थे, लेकिन आज आप देख भी सकते हो यार. फिलहाल के लिए ये गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा गाना है, डिस्को डिस्को जेंटलमैन का गाना. आपके मैसेज इन शॉर्ट पढ़ लेता हूँ. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है, आज मेरी बेटी खुशबू अरोड़ा का जन्मदिन है, आप कृपया आशीर्वाद प्रदान करने का करें. अरे भाई, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे खुशबू अरोड़ा, जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं बच्चा, गॉड ब्लेस यू, अच्छा अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छा नाम करो, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी रात डांस करते रहो, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करो, हैप्पी बर्थडे. हरिओम महेश्वरी जी मेरे साथ राइट आंसर के साथ जुड़े थे आज की सुबह. इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया था चमन लाल साहब का, पुतली घर रोड से. एंड गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है, इन्होंने मुझे बताया ये रामलीला यहाँ पर होती है, कौन सा एरिया का नाम लिखा है ये निकुंज भाई, थैंक यू सो मच यार आपको बताने के लिए, मैं इसको अभी पढ़ के फिर आइडेंटिफाई करता हूँ. सारी राह कोमल ने सही जवाब दिया था, कोमल थैंक यू. कुंदनपुर से धर्म कश्यप ढक्का से मेरे साथ जुड़ रहे थे राइट आंसर के साथ, ये मेरे पास सही जवाब पहुंचा था. हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है जी, आपने बिल्कुल सही जवाब बता दिया है, कंग्रेचुलेशन आपको भी. निकत फातिमा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. राम राम जी, अंकित बात कर रहा हूँ, मैं अमरोहा से हूँ, शो डेली सुनता हूँ, मुझे आपका शो अच्छा लगता है जी, थैंक यू. इन्होंने सही जवाब दिया, थैंक यू मेरे भाई अंकित. निशा मेरे साथ जुड़ी है राइट आंसर के साथ, हाय निशा, गौरव टेलर नवीन नगर से जुड़े हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, गौरव भाई क्या हाल चाल, इनको शो अच्छा लग रहा है और इन्होंने सही जवाब दिया, थैंक यू गौरव भैया. रिहाना जुड़ चुकी थी मेरे साथ, अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू अमित. मेरे भाई हेमगिरी हरतरा कॉलोनी से जुड़े हैं, हाय जय श्री राम. आनंद जी बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग. यार हमारे गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा.
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो नाना पाटिल जी को बहुत श्रद्धांजलि मेरी तरफ से और दूसरा आपके सवाल का जवाब है, गाने के बोलने सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, मूवी का नाम है दिलवाले.
0: क्या बात है. अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ रहे थे सही जवाब के साथ, सहारनपुर से जोड़ रही पलवलीस मेरे साथ जुड़े, उस्मान टेलर भी जुड़ चुके हैं आज की सुबह. एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है. मित्रपाल जी गुड मॉर्निंग, ये दुर्गेश भाई ने सही जवाब दिया था मेरे को, गागन से मेरे साथ जुड़े थे. नितिन कुमार हिमगिरी कॉलोनी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. अच्छा इन्होंने लिखा था गागन पर बहुत जाम है आनंद जी, मैं हिमगिरी कॉलोनी से हूँ नितिन कुमार, सॉरी नितिन जी थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने. ट्रैवल इज द राइट आंसर, शाहरुख खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या बात है. विक्की भाई जुड़ चुके हैं, रेडियो वाले को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. दर्पण भैया थैंक यू, थैंक यू सो मच. पल्लवी थैंक यू सो मच. मुमताज सो मेनी मैसेजेस यार, थैंक यू सो मच. 10:11 हो रहे हैं, मिलते हैं कल से स्टेशन ऑफ द नेशन पे, रखिए आप अपना ढेर सारा ख्याल. आरजे आनंद कहता है अभी साइनिंग ऑफ, ऐसे मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो और ऐसे ही रेडियो बजाते रहो. बाकी कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, रेडियो वाला आनंद के नाम से, एन ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, आप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हो हमारे साथ. प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है FM मुरादाबाद 89.6 के ऐप और जुड़ जाना है दिल से दिल तक. अभी के लिए टिल देन टुमारो मॉर्निंग.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी, खूबसूरत सी थर्सडे मॉर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, जहाँ सुबह की शुरुआत होगी पॉजिटिव वाइब, प्यारी बातों और ढेर सारी एनर्जी के साथ। और आज की सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत थॉट के साथ। दोस्तों, कौन कहता है इंसान कुछ लेकर नहीं आता और ना ही कुछ लेकर जाता है। सच तो ये है कि इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। भाग्य हमें रास्ता देता है, लेकिन कर्म तय करते हैं कि हमारी पहचान क्या होगी और हम क्या छोड़कर जाएंगे। थर्सडे मॉर्निंग एक छोटा सा वादा खुद से करिए, भाग्य के भरोसे सिर्फ बैठना नहीं है, अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखनी है। तो चलिए, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखिए, दिल में पॉजिटिविटी रखिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मॉर्निंग मसाला अभी शुरू हुआ है और आज की सुबह होगी बिल्कुल फ्रेश, पॉजिटिव और फुल ऑन एनर्जेटिक। स्टे कनेक्टेड एवरीवन। और हाँ, आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारा नंबर है 9837896896। आज तारीख है 8 अक्टूबर की और बाहर के मौसम की अगर बात करें ना, तो बाहर का जो वेदर है अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और गुनगुनी सी धूप भी है। समय हुआ है 10:18, तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत एक अमेजिंग ट्रैक के साथ। वैसे मानना पड़ेगा आपकी मोहब्बत को बिना कुछ कहे आपके संदेश यहाँ पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन इतने खूबसूरत संदेशों के लिए। और चलिए सुनिएगा एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, मैं वापस आती हूँ।

0: ना चले ठंड पे गई है।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है अभी 10:28 10:28 राइट नाउ स्टूडियो की में टाइमिंग हो गई है और आपके यहाँ पर खूबसूरत लाजवाब मैसेज जो हुए, आपने तो कमाल ही कर दिया एवरीवन। और आज की सुबह हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी, और ये हमें प्यार भरा आदाब पहुँचाते हैं। आपको भी आदाब सर, आदाब। और उसके अलावा एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नवीन नगर से, एंड नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और ये कहते हैं खुशी जी, हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरती से आप कार्यक्रम को पेश करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ में उन्होंने एक थॉट भी शेयर किया है,

इन्होंने एक थॉट शेयर किया कि पात और कुपात में बहुत अंतर होता है। गाय घास खाकर दूध देती है और सांप दूध पीकर जहर उगलता है। एग्जैक्टली राइट। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आज की सुबह है कि चाय की चुस्कियों में जो सुकून मिलता है वैसे ही मिठास हमारी दोस्ती में होती है।

तलाशते हैं खुशियां शहर भर में, हमें तो हर मोड़ पर तेरी साथ। ओके, हमें तो हर मोड़ पर तेरा साथ मिलता है, ये शायरी आपके लिए है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और आपने जो एक कप भेजा है ना, एक कप टी का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, गर्मा गर्म होए, इसमें से अदरक इलायची वाली खुशबू आ रही है भाई। सर्दियों में ना चाय का एक अलग ही, मतलब कह सकते हैं कि एक अलग ही आनंद आता है चाय पीने का सर्दियों में, विंटर्स में स्पेशली मसाले वाली चाय। ओ हो, सुबह की खूबसूरत गुनगुनी धूप में जब कड़क चाय मिल जाती है ना, तो दिन ऑटोमेटिकली सुहाना हो जाता है। एंड नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से, रिहाना जी का गुड मॉर्निंग हमें पहुंचा दी आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग रिहाना। और बैक टू बैक हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हम सभी को शामिल करेंगे है ना। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एवरीवन आज की सुबह, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आज और क्या स्पेशल है, क्योंकि वो भी सारी अपडेट भी मिलना इंटरटेनमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज 8 अक्टूबर है और आज मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ये दिन हमारी वायुसेना की स्थापना और देश की हवाई सुरक्षा में उनके साहस, सेवा और समर्पण को सलाम करने का दिन, आसमान की ऊंचाइयों में देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर वायु योद्धाओं को दिल से सलाम और नमन करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। लौट कर आते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप भी अपने संदेश पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा।

एक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज खुशी के साथ आप हैं और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना। और सच में दोस्तों, आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी आंखों का ना विशेष ध्यान रखा करो। और मैं अब आंखों की बात क्यों कर रही हूँ दोस्तों, बताती हूँ आपको। आज 8 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टिहीन दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आंखें हमारी जीवन की बेहद अनमोल नेमत हैं। तो आज एक छोटा सा रिमाइंडर, आंखों को पर्याप्त आरामदेह स्क्रीनिंग टाइमिंग का ध्यान रखें और समय पर आंखों की जाँच जरूर करवाएं एवरीवन, क्योंकि खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए ना अपनी आंखों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और आंखों का ख्याल सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक किसी को, हर किसी को रखना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी का स्क्रीनिंग टाइमिंग सीमित रखें और पढ़ाई के दौरान सही रोशनी का ध्यान रखें। युवाओं और बड़ों के लिए लंबे समय तक स्क्रीनिंग देखने के बीच बीच में ब्रेक लें, आंखों को बार बार ना रगड़ें और साफ सफाई का ध्यान रखें। और हमारे सीनियर सिटीजन समय समय पर आंखों की जांच जरूर करवाएं और अगर धुंधली दिखाई दे या आंखों में कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया की खूबसूरती है। इसीलिए आंखों का ख्याल रखिए और अपने नज़रिए को सुरक्षित रखिए। हाँ जी, देखिए नज़रिया तब खूबसूरत बनता है जब नज़रें खूबसूरत होती हैं। और कहते हैं ना कि जब नजरिया खूबसूरत होता है तो दुनिया भी खूबसूरत लगती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए एवरीवन। आज सेलिब्रेट किया जाता है हैप्पी वर्ल्ड साइट डे एंड अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए। और जो आप आंखों में काजल लगाते हैं ना, ओए होए क्या ही कहने। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय दी, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। दरक्षा फाती

0: जी का मैसेज आज की सुबह हमारे पास आया है और साथ में रुकैया फातिमा है, अफरोज फातिमा जी हैं, लाइबा हैं, इल्मा रानी हैं एंड राबिया भी हैं। वाओ, खुशी दी भी हैं। अच्छा जी, और ये दो फ्लावर्स जो आपने भेजे हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको प्ले करने का। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद इशारी कली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए विवन, सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक और उसके बाद लौटकर मैं वापस आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो के सुनी को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और खुशी कहती है आपसे, क्या कहती है खुशी? दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप दिल से मुस्कुराते हैं ना तो सच बता रही हूँ बहुत प्यारे लगते हो आप सब।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और आपके यहाँ पर खूबसूरत मैसेज तो आ ही रहे हैं बैक टू बैक. तो मैंने सोचा कि देखिए संदेशों को तो हम शामिल करेंगे ही, लेकिन मैंने मालूम मेरे माइंड में एक थॉट आया कि चलिए आज अपने श्रोताओं से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. और जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है. एक्चुअली बहुत इजी भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मालूम किया जाए. दोस्तों आज का क्वेश्चन मेरा है, आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता, बताएगा क्या है वो. हाँ जी, मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ अपना क्वेश्चन. आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता, इस पहले का आंसर क्या है आप मुझे बताइएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और चलिए आपके जो संदेश आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं मुरादाबाद से. निशा जी का मैसेज हमारे पास आया आज की सुबह और ये गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी जी, जय श्री राम. आपको भी जय श्री राम. मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा अनुज सर कैसे हैं. अनुज कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से. और एक और मैसेज हमें यहाँ पर मिला है. ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मोहम्मद कामिल जी का, जिला रामपुर की टाना से. एंड गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. साथ में लाइबा काजमी जी भी, इन्होंने उनका नाम भी शामिल किया है और एक गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है. और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन भी लिखी है कि मेरी जज्बात मेरी पहचान है वो, मेरी जज्बात मेरी पहचान है वो, मेरी जस्तजू मेरी शान है वो. लोग कहते हैं भुला दो उसे, लोग कहते हैं भुला दो उसे, पर कैसे भुलाऊं यारो, इस सीने में धड़कती जान है वो. क्या बात है सर, बड़ी प्यारी प्यारी शायरियाँ लिखते हैं आप. हाँ, और आज मैंने आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, प्लीज मुझे बताइएगा. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर संदेश आया है महराजुद्दीन जी का कश्मीर से आज की सुबह. और सर हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छी होंगी और हम आपको रेगुलर सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुनकर. थैंक यू. मोहम्मद उस्मान जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद रामपुर दोराहा से. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं. देखो आपको ना दो आंसर नहीं पहुंचाने, एक ही गेस करके आप सही एक ही आंसर पहुंचाएगा, ठीक है. चलिए मैं वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ आज का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है. हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता, क्या है हमारी पहली का आंसर जरा बताइएगा. चलिए जब तक आप अपने संदेश पहुंचाते हैं ना, तब तक हम एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं. बड़ा ही ट्रेंडिंग ट्रैक है. लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपको ना सुनवाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक है, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पर. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को भी ये ट्रैक सुनवा दिया जाए. चलिए एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
0: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

¡Diablo! ¡Diablo!

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुनाई अमेजिंग ट्रैक निशांत मुक्ता की आवाज में, यूपी वाली लड़की से प्यार हो गई एंड भोजपुरी ट्रैक है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, तो मैंने कहा चलो अपने लिसनर्स को भी सुनवाते हैं थोड़ा भोजपुरी टच। यूपी वाले होते ही इतने प्यारे हैं, क्या करें। हाँ चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद सिटी में क्या चल रहा है। दोस्तों मुरादाबाद में विश्व दृष्टिहीन दिवस मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है अपनी आंखों से प्यार करें। इस मौके पर डॉक्टरों ने बच्चों में बढ़ती स्क्रीनिंग टाइमिंग और कमजोर होती नजरों को लेकर चिंता जताई, साथ ही बच्चों के स्क्रीनिंग टाइमिंग को सीमित रखने और आंखों की नियमित जांच कराने की सलाह दी है। समय हुआ है 11:10 और आपके संदेश यहाँ पर बैक टू बैक मिल रहे हैं, चलिए उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए रामपुर से शबनम जी का, साथ में लाइबा काजमी अफरोज फातिमा है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप। मैं तो ठीक हूँ मैम, आप बताइएगा आप कैसे हैं। और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी लिखी है कि तेरा जिक्र होते ही दिल मुस्कुरा जाता है, तेरा जिक्र होते ही दिल मुस्कुरा जाता है, हर अधूरा ख्वाब जैसे पूरा नजर आता है, मोहब्बत का मतलब अब समझ आया है मुझे, मोहब्बत का मतलब अब समझ आया है मुझे, जब हर दुआ में बस तेरा ही नाम आता है, अब हर दुआ में बस तेरा ही नाम आता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शायरी है आपकी एंड थैंक यू शबनम जी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अंसार हुसैन जी का दौलत बाग मुरादाबाद से, और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, मैं पूरा प्रयास करूंगी सर प्ले करने का। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी, कैसे हैं आप। मैं तो ठीक हूँ। अब्दुल कलाम जी का मैसेज यहाँ पर आया है मुरादाबाद जामा मस्जिद से, और सर ने भी एक ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने। और आज की सुबह मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत सिंपल सी हमारी जो पहेली है और उसका आंसर भी बहुत इजी है, पर मैं आपको अभी उसका आंसर नहीं बताऊंगी एंड उसका आंसर ना आपको देना है, आपको बताना है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता, क्या है वो बताइएगा। आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता, मैं कोई हिंट भी नहीं दे रही हूँ यार, बहुत इजी है, अगर मैंने कुछ अल्फाज भी मुंह से निकाले ना तो आप समझ जाएंगे, पर हम चाहते हैं कि आप ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत सा है इसका आंसर। चलिए अभी सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद बात करेंगे आपसे, आप कहीं मचाइए, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 11:21 और दोस्तों अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक मजेदार अपडेट। सारा अली खान और साथ में आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशन से जुड़े हैं एंड पंजाब के खूबसूरत वादियों और खेतों के बीच दोनों का पंजाबी अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और फिल्म की रिलीजिंग अब 23 अक्टूबर को होगा एंड उसकी प्रमोशन के लिए देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी पूरी है और दोस्तों हम भी जरूर देखने जाएंगे आयुष्मान खुराना और साथ में सारा अली खान जी की फिल्म आने वाली है 23 अक्टूबर को। अब बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की। शुभमन गिल ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में उनका अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है और पोस्ट को लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड है एंड क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से जलवा दिखाने वाले शुभमन का ये ऑफ फील्ड अंदाज भी फैंस को खूब पसंद आ रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं एक प्यारी सी गुड न्यूज बॉलीवुड से। कियारा आडवाणी और साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि वो दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने अपनी बेटी सराय के साथ एक खूबसूरत पोस्ट शेयर करके ये खुशखबरी दी है फैंस और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। तो इस प्यारे कपल के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी बेस्ट विशेस और हमने आज की सुबह बहुत ही सिंपल सा एक आपसे पहले पूछी थी उसका हमारे श्रोताओं ने दिया है सही जवाब। और सबसे पहले हमें सही जवाब किसने पहुंचाया है एंड उनका नाम तो हम शामिल करेंगे ही लेकिन इंतज़ार नहीं करवाते। चलो देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले हमें सही जवाब किस प्यारे से श्रोता ने पहुंचाया है, क्या उनका नाम है, उन्हीं का मैसेज पढ़कर जान लेते हैं। और सबसे पहले हमें सही जवाब यहाँ पर पहुंचाया है अफरोज फातिमा जी ने। एग्जैक्टली राइट एंड मैंने आपसे पूछी थी पहले कि आंखों में बस जाता है पर दिखाई नहीं देता वो क्या है एंड देखो उसे खुली आंखों से भी देखते हैं और जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हम देखते हैं, क्या है वो? ड्रीम, जी हाँ, सपना। राइट आंसर है सपना। और सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाती हैं अफरोज फातिमा जी। अफरोज जी आपको बहुत बहुत बधाई है, आज आप हमारे शो की बनती हैं लकी सुपरस्टार। तो आपके लिए हो जाए क्यों ना जोरदार तालियां।

मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग निखत फातिमा जी का मैसेज आज की सुबह हमारे पास आया है। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राइट आंसर राधे राधे खुशी, राधे राधे आपको भी मैम। और राइट आंसर है स्लीप या ड्रीम, एक्चुअली मैम राइट आंसर ड्रीम है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बुद्धि बिहार से अलका वर्मा जी, बहुत एक्टिव लिसनर हैं हमारी एंड बहुत स्वीट भी हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, सर जवाब देते हैं ख्वाब। ओहो हो थैंक यू सो मच अपना सही जवाब पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए विवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत। आप कहीं मत जाइए, रेडियो के सुन को बिल्कुल भी मत घुमाइए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती हैं, सीधे दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही दमदार आवाज और शानदार अदाकारी के मालिक थी नाना पाटेकर जी। आज भारतीय सिनेमा के इस दिग्गज कलाकार को याद करते हुए दिल नम है। 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर जी का निधन हो गया, लेकिन दोस्तों उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाने की कहानी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। मुंबई में फिल्मों की पोस्टर बनाने से लेकर बड़े पर्दे तक उनका सफर आसान नहीं था। थिएटर से अपने अभिनय को निखारा और फिर गमन से फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद परिंदा, कीर्ति वीर, खामोशी, अब तक 56 और वेलकम जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। नाना पाटेकर जी की खासियत थी कि वो किरदार निभाते थे उसमें पूरी तरह उतर जाते थे, और अभिनय के साथ साथ समाज और किसानों के लिए किए उनके काम भी उन्हें खास बनाते हैं। नाना पाटेकर जी पर्दे दोस्तों आज दमदार अभिनेता जी को हम भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस समय मैं आपको बता देती हूँ साथियों, वक्त हुआ है 11:40 और आपके यहाँ पर खूबसूरत लगातार संदेश भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश आए हैं और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी, एंड गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं आज के सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर रंजीत जी का आया है और ये भी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्रीति जी का आया है, ये मैसेज पीतल नगरी से पहुँचाती हैं आज की सुबह और कहती हैं, खुशी जी हम आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए विवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ।
1: वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, ये लम्हा क्यों पाऊं

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और बात कर लेते हैं आज के वेदर अपडेट की, कैसा मौसम रहने वाला है आज मुरादाबाद का। दोस्तों, मुरादाबाद का वेदर की अगर बात करें तो साफ और धूप वाला रहने की संभावना है। तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान करीब 21 से 22 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। शाम के आसपास गरज वाले बादल बने रह सकते हैं, इसलिए मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बॉटल अपने साथ रखें और तेज धूप में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गन गनाते रहिए। और आपके यहाँ पर जो संदेश आए मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर प्रतीक्षा का मैसेज आया है और ये प्रतीक्षा अपना मैसेज हमें पहुंचा रही हैं। विकास नगर से कहती हैं, मैम कैसे हैं आप? देखिए मैम तो अच्छी रहती हैं जब आप सबके प्यारे प्यारे श्रोताओं के खूबसूरत संदेश यहाँ पर आ जाते हैं। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर दीपांश का आया है और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं गांधीनगर से। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास नीलाक्षी का आया है और ये कहती है, मैम आपने जो पहली पूछी थी ना उसका आंसर है ड्रीम। अरे क्या बात है भाई, इतनी देर से आपने संदेश पहुंचाया है। हाँ लगता है थोड़ा काम में व्यस्त थी। चलो कोई बात नहीं, देर से आया लेकिन आ तो गया फाइनली आपका संदेश, अच्छा लगा मेरे डियर। चलिए सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं बचाइएगा, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

देखिए दोस्तों, मैंने तो कुछ नहीं किया है, बट हाँ यहाँ पर आपके संदेशों ने जरूर धूम मचा के रखी हुई है। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, बॉलीवुड से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। करीना कपूर खान और साथ में शाहरुख खान 15 साल बाद एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक दोनों फिल्म किंग के स्पेशल गाने डेडिकेट डैडी कूल के कूल में साथ दिखाई देंगे, जिसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में होने की बात सामने आई है। यानी फैंस के लिए ये जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर देखने का खास मौका हो सकता है। तो एवरीवन, आप सब तैयार रहेगा करीना कपूर खान और साथ में शाहरुख खान जी को देखने के लिए। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नताशा का, ये मैसेज हमें पहुंचाती है प्रकाश नगर से। हाय मैम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, आई एम गुड। आप बताइएगा कैसे हाल चाल है नताशा, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी होंगी। और ये जो आपने स्माइली वाली इमोजी भेजी है ना, तो इस मुस्कुराहट से हमें समझ आ रहा है आप बहुत हैप्पी हैं आज। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर शशांक का है। शशांक हमें मैसेज पहुंचाते हैं एंड ये मैसेज हमारे पास धामपुर से आया है शशांक का, और ये एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। कहते हैं कि मैम, हम जितने भी यहाँ पर ट्रैक सुने आपकी बातें अपडेट्स, हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं एंड मैसेज भी हमने फर्स्ट टाइम किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू शशांक, आपने अपना मैसेज पहुँचवाया है धामपुर से। तो चलिए एवरीवन, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन हाँ मैं आपसे मिलने वाली हूँ सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और देखिए, विंटर्स का यू नो सीजन स्टार्ट होने वाला है और हरी हरी सब्जियाँ, मतलब जो खाने पीने के शौकीन है ना बहुत ज़्यादा, एंड वही सीजन आ गया है। गाजर का हलवा मेरे को तो बहुत पसंद है। और देखिए ना, अब नवरात्रि भी आने वाले हैं, सी यू सून। एंड 11 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई भी हो रही है घर में। तो लगे रहिए अपने कामों में और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और दोस्तों, हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: रमन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाती हूं डॉक्टर एके सिंह से, जो कि चंबल फर्टिलाइजर के वरिष्ठ प्रबंधक है। डॉक्टर एके सिंह जी हमें खेती किसानी कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, उसके विषय से मैं हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराती हूं। वह विषय है बदलते मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव। इस संदर्भ में हम आपको आगे जानकारी दें, इससे पहले हम डॉक्टर सिंह से यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित PMKSK योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में, ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, DAP का कब इस्तेमाल करना है, NPK का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: ये जानकारी हमने डॉक्टर सिंह से सुनी पीएम केएस के योजना के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, अब आप आगे यह भी बताएं कि उर्वरक उपयोग के विषय में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है उसका क्या उद्देश्य है।
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है ले मैं भी बोरी डाल दू इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के ऑडियो क्लिप सुनने के बाद अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि बदलते मौसम से आपका क्या तात्पर्य है?
2: हाँ, अगर हम देखें तो जैसे आज के समय में कभी आप सूचनाएं सुनती होंगी कि अब के लानिनो आ गया है, उसकी वजह से बारिश कम होगी या बारिश इस तरह से होगी कि कहीं पर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर कम हो जाएगी, ये इस तरह का है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इसकी वजह से समुद्र की जो सतह होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जो मानसून की आवक है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इस बार ये मार्च तक रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब पूरा संसार ही कह ले एक तरह से, इसमें ठंड भी बहुत कम पड़ेगी। मतलब जो एक सामान्य ठंड होती थी, विंटर होती थी जिसकी वजह से स्नोफॉल होता था और सारा चक्र हमारा एक सामान्य रूप से जो अब तक चला आ रहा है वो था, वो कहीं ना कहीं इस बार रुकेगा। तो ये मौसम का जो अपना चेंज है, क्योंकि अब तक जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती जो अब तक चला आ रहा था, मौसम एक सेट डर रहा था कि अक्टूबर महीने से जो ठंड होगी टेम्परेचर गिरेगा, इस महीने इतना होगा, इस महीने इतना होगा, अब शायद वैसा ऐसा क्रम इस महीने न रहे, इस साल न रहे, है ना। अच्छा, मानसून का रहता था कि भाई इतनी बारिश है तो आनी आनी है, एक ही समय पे आ गई इस समय, तो उसके हिसाब से हम जो है अपनी खेती का सारा काम सेट करते थे। लेकिन अब ये उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहे, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये स्थाई है, लेकिन हो तो रहे, तो इनका खेती पर कहीं कहीं असर तो पड़ता ही है। अब सपोज मान के चले कि हमने सामान्य सोच के कि भाई सामान्य इस बार रेनफॉल होगा, बारिश अच्छी होगी, हमने धान ही लगा दिया सारे में, अब बारिश नहीं हुई और आपके पास पानी का कोई साधन है नहीं, ट्यूबवेल नहीं है, तो क्या आपका धान हो पाएगा?
1: नहीं
2: हो पाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने ऐसे में आपने ये चीज आपको आइडिया होती और आप कोई और का जो चुनाव कर लेते तो वो शायद आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से या जो मतलब परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो हमारे खेती करने का तरीका है उसमें भी हम उसके हिसाब से उसकी उसके साथ लय मिलाते हुए हम उसमें परिवर्तन करें।
1: तो डॉक्टर साहब आगे हमारे श्रोताओं को यह भी बताइए कि ये जो बदलते मौसम की मार है उसका वो सामना किस प्रकार से करें।
2: हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें कही, इसका ही अगर हम तोड़ निकालें तो कैसे सामना करें। जैसे मान के चलिए कि कोई एक जो किसान है जिनका कि 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में वो एक जैसी फसल लगाते हैं, एक फसल लगा दी उन्होंने सपोज। अब जैसे रबी का सीजन आ रहा है, उन्होंने गेहूं लगा दिया, अब गेहूं लगाया, गेहूं के लिए ठंड ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक होने वाली फसल है, अगर उसके आखिर में पकाव के समय पर ठंड नहीं पड़ी तो क्या होगा, वो फसल का जो उत्पादन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो अब क्या करें, गेहूं तो उगाएंगे लेकिन गेहूं का रकबा कम कर सकते हैं, गेहूं आधा कर लें, आधे में थोड़े से आधे के आधे में सरसों कर लें, कुछ चना कर लें, कुछ ऐसी फसल कर लें जो कि हरी कट जाती है, जैसे सब्जी के लिए हरी मटर आती है ना, तो हरी मटर आती है, हरी मटर टाइम पे बिक जाती है, उसके लिए पकाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं कि उनमें हम, जैसे आपने एक जो कहावत सुनी होगी, एक टोकरी में सारे अंडे रख देना, तो क्या हुआ, टोकरी गिरी सारे अंडे फूट गए। अगर वो अलग अलग टोकरी में होते तो शायद जो अलग टोकरी में था जो नहीं गिरी उसके वो अंडे बच जाते आप। तो वही सीधा साधा फंडा है इसमें कि हम इसमें इसका सामना अगर हमें करना है तो हम जो पहली चीज ये कि जो फसल का चुनाव है वो मौसम की लय को देख के करें, और वो लय देखने का अभी तक तो जो साधन है वो यही है कि जो भारत सरकार का जो तंत्र है जो उसके बारे में कहता है हम उनकी सुने, है ना, क्योंकि और तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम जो जान सके मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में कहा है, भविष्यवाणी दी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चले, तो इस तरह से सामना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि संसाधन की बात है तो हम अपने जो खेतों में जो मतलब जो जैव तत्व होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, है ना। उसको बढ़ाने से क्या होता है, एक खेत की ताकत हमेशा अच्छी, वो जो ज्यादा समय तक पानी रोक सकता है। सपोज एक बार पानी दिया तो वो एक महीने तक होल्ड कर सकता है, फसल सूखेगी नहीं। लेकिन अगर उसमें जैविक तत्व कम है तो वो 15 दिन में ही पानी वो सूख सकता है, तो ज्यादा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम कर सकते हैं कि खेत में पानी के निकास की भी व्यवस्था करें। अगर ज्यादा बारिश कहीं होगी तो उससे आपकी फसल खराब हो सकती है, तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। निकास की व्यवस्था के एक तो तरीके खेत से बाहर पानी निकाल दो, दूसरा तरीका ये है कि जो हिस्सा आपके खेत का ढाल वाला है उसी हिस्से पे एक जो खड्डा खोद दे और वहां पानी इकट्ठा करते रहो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के और खर्चा करें, सोच समझ के करें, बहुत ज्यादा खर्च न करें, जिससे कि अगर कुछ घाटा होता भी है तो हम उसे संभाल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जो हमारे फसल उत्पादक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए फसलों के चक्रवार का क्या महत्व है?
2: हाँ, फसल चक्र आपने पूछा। देखिए, फसल चक्र क्या होता है, लगातार एक जैसी जब हम जब वो उगाते हैं जो मतलब जो फसलें, तो वो आपकी फसल चक्र में शामिल नहीं होती। जैसे कि अभी रबी का सीजन आ रहा है, तो एक किसान अपने खेतों में रबी में हमेशा गेहूं उगाते हैं, तो अब उनको चाहिए कि गेहूं के अलावा कुछ और फसलें भी लें, जैसे सरसों है, चना है। और कुछ किसान है जैसे कि लगातार एक खेत में सरसों उगाते चले आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसमें चना ले लें या गेहूं ले लें। मतलब जो फसल का क्रम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप हमेशा एक जैसे ही खाना खा रहे हो, थोड़ा चेंज करिए। इसे चेंज कैसे करिए कि भाई आज आप हरी सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज खाइए, या आज आप दूध, मतलब दूध ही दूध पे आदमी रहे तो उसका स्टमक थोड़ा अपसेट हो सकता है। एक ही तरह का जो चीज होती है उससे थोड़ा सा बचे। उसका कारण यह है फसल चक्र का कि एक तो क्या होता है, जब आप फसलों का क्रम तोड़ते हैं तो जैसे एक जैसी फसल जहां होती रहती है ना, तो वहां एक जैसा चक्र बन जाता है, वातावरण बन जाता है, वहां एक तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, एक तरह का रोग पैदा हो जाता है। उनको पता होता है कि इस समय पर मेरे लिए ये भोजन आने वाला है, मेरे लिए जो मैं लाइक करता हूँ इस तरह की फसल यहाँ तैयार नहीं। अगर आपने क्रम तोड़ दिया, वो गेहूं का इंतजार कर रहा और आपने उसमें चना कर दिया, तो फिर वो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने होगी, उसको वहां के ऊपर जो फेत है वो वहां से हट जाएगा। जैसे मान के चलो आप हर रोज रोटी डालते हैं घर के आगे, कुछ एक दो दिन शायद कोई खाने वाला नहीं आएगा, ना कुत्ता आएगा ना गाय आएगी, लेकिन एक बार अगर वो आने लगी और आप 3 दिन फिर और न डालो, तो वो 2-3 दिन आती है, लेकिन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया ना, फिर वो नहीं आएगी। उसे लग जाएगा पता कि भाई अब यहाँ कोई रोटी नहीं डालता। तो इसी तरह हर जीव का एक अपना एटीट्यूड होता है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। तो जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ये क्रम टूटता है, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि हर एक जो होती है फसल, उसकी जो रूट सिस्टम होता है जो कि मतलब खाना लेती है जो खेत के अंदर से या पानी लेती है, उसकी एक जो मतलब साइज होता है, गहराई होती है। कोई ज्यादा गहरी जाती है, कोई ऊपर रहती है, कोई फैलती ज्यादा है, कोई कम फैलती है। तो वो जितनी ज्यादा कोई अगर जो मतलब फैलने वाली है तो वो आपके मतलब जो आपका खेत की मिट्टी उसमें ज्यादा स्थान से लेगी भोजन, जो ज्यादा नीचे वाली है वो नीचे से लेगी और जो ऊपर रहती है ऊपर से लेगी। तो जब हेर फेर से आप इसको बोएंगे तो हर जगह से समान रूप से भोजन ले पाएंगी फसल।

0: हम सभी किसानों को समझना होगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये हमें दोबारा फिर शुरू करना चाहिए अगर हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जाना चाहते हैं। टिकाऊ खेती मतलब जो हमेशा उपयुक्त हो, लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते, है ना। जैसे बोलते हैं कि भाई टिकाऊ हिस्सेदार है ये हमारा, ये कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, रात को आवाज लगाओ आ जाता है, हमें जरूरत हो या आता है या इसको जरूरत हो तो हम इसके पास जाते हैं, तो एक फेथ जो होता है ना टिकाऊपन वो थोड़ा बढ़ता है इससे।
1: यानी फसल चक्र अपनाना सही और अच्छा दोनों है। तो
0: हाँ सही है, अच्छा है और समय की मांग है।
1: डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि बहुफसली खेती क्या हमारे किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगी?
0: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी हमारी जो वार्ता हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं इस ओर ही इशारा था। बहुफसली से क्या होता है कि एक जैसी फसलें हम न लें। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमने आम का ही पूरा बाग है हमारा और आम की फसल में लगातार हम लेते चले आ रहे हैं, सडनली कोई ऐसी आपदा आ गई, इपिडेमिक आ गया, तो सारा बाग का जो हमें उत्पादन मिलना था वो अफेक्ट हुआ, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी वो पूरी की पूरी हमारी। लेकिन आम के साथ हमारे कुछ अमरूद के बाग होते, कुछ लीची के बाग होते, कुछ पपीते के बाग होते, तो क्या होता, आम में नुकसान हुआ ना, लेकिन पपीते में शायद कुछ मिल जाएगा, अमरूद में कुछ मिल जाएगा, तो एक जो मतलब आमदनी का वो है ना क्रम, वो एक फसल होने से पूरा टूट सकता है या पूरा फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको एक बार बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है लेकिन 4 बार आपको नुकसान हो गया तो कौन सी अच्छी बात है, 4 बार का नुकसान भारी पड़ जाएगा ना। तो इसलिए एक से ज्यादा फसलें लें। जैसे आप पहले गेहूं ही गेहूं उगाते थे, तो आप कोशिश करिए इस बार आपको सरसों भी लेनी है, थोड़ी सी चना भी लेना है, कोई और भी ऐसी फसल लेनी है, जैसे अलसी आपके अगर होती है, अलसी आपने देखा फ्लैक्स सीड है वो आप ले सकते हैं। अगर इस समय पर कोई और ऐसी फसल आपको लग रही है जो कि आपके लिए लाभदायक है, या नई कोई चीज आई है जो किसी और किसान ने की है उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुफसली मतलब ये एक से ज्यादा ठिकाने या एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स आप एक ही जगह पे क्रिएट कर रहे हैं, किसी एक फसल के ऊपर या एक सोर्स के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे। जैसे मान के चलो ये तो फसल की बात होगी, जैसे हम किसान हैं तो हम खेती पे आश्रित हैं, गांव में रहते हैं, अब हमारी आमदनी के साधन क्या है, खेती है, और दूसरा क्या है सोचिए,
1: दूसरा अन्य रोजगार, नौकरी,
0: अन्य रोजगार में क्या हो सकते हैं।
1: बिजनेस।
0: जी, और एक और जो बिल्कुल खेती के साथ साथ है वो मैं बताता हूं, वो है दूध का काम हो गया, यानी मतलब पशुपालन का काम, आप अंडे पालन का काम कर लीजिए, मुर्गी रख लीजिए, बकरी रख लीजिए, तो वो अगर खेती में कोई फेल होता है तो ये हो जाता है, उनका भोजन सारा खेती से आता है, सारा उसी से संबंधित चीजें हैं, ये हो गया। तो मतलब एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत जो कि आपके आसपास ही है, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वो एक अलग अलग तरह का काम, आप नौकरी करेंगे वो एक अलग तरह का काम है, कोई किसान जो पूरी समय से खेती में नौकरी का कोई उसको चांस नहीं है तो वो क्या कर, उसको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी बेचारे में एकदम, तो वो खेती में ही अदला बदली कर सकता है। तो इस तरह से बहुफसली एक से ज्यादा फसलें लेना हमेशा उपयुक्त रहता है। फिर इसी तरह इसी क्रम में आप अपने खेत बदलते रहिए, वो फसल चक्र में शामिल हो जाएगा, उससे खेतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और ये जो इस तरह की आपदाएं आती हैं इनसे कहीं ना कहीं हम खेती करते करते इनका कोई ना कोई हम समाधान खेती में ढूंढ लेंगे और आसानी से हम ये जो आपदाएं हैं इनसे थोड़ा पार पा लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में हम कोई अपने यहां बैठ के जो परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो होनी है तो होनी है। अभी जैसे कोई कह रहे थे कि एक जगह 5% ज्यादा हुई है लेकिन 1% 40 एक जगह 40% रेंज कम हुई, तो कितना बड़ा अंतर है अगर आप देखें, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर जहां 5% ज्यादा हुई है वहां जो फसल होती है 40% वाले ने भी अगर वही फसल उगाई तो उसको तो नुकसान होगा। तो ये कुछ इस तरह की चीजें इसमें, एक से ज्यादा जो मतलब फसलें अलग अलग तरह की उगाना हमेशा प्रासंगिक है और खेती के लिए अच्छा है। दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप बेचने जा रहे हैं, सपोज एक जगह एक ही फसल होती है और सारे किसान वही लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा उसके रेट डाउन भी आ सकते,

0: भाई प्रोडक्शन बहुत हो गया। अब जैसे जी एक टाइम पे तो आप देखो कि टमाटर आता है, सबके टमाटर हो गया, तो फिर क्या करते हैं वो टमाटर फेंक के चले जाते सबको। देखा होगा आपने, किसानों की न्यूज सुनी होगी। क्यों? सभी ने देखा कि पिछले साल टमाटर के रेट ठीक रहे थे, इस साल सबने लगा। अच्छा, लहसुन होता है, लहसुन में भी कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा लगाओ। अगर लहसुन के रेट नहीं बढ़े, थोड़े ही लगाया था मैंने, तो क्या दिक्कत? टमाटर के रेट नहीं बढ़े, थोड़े ही लगाया था, कुछ और लगा ऐसा करके। तो रेट के बारे में भी आपको मंडी भाव भी ठीक मिल जाते हैं। तो ये इसका फायदा है कि एक से ज्यादा फसलें ले। फिर आप ऐसा जो काम करते हैं, तो आप अपने लिए चीजें उगा सकते हैं। सपोज आपने सौंफ लगा ली, आपने ठंड के टाइम पे एक एकड़ के एक चौथाई भाग में सौंफ लगा ली, 2 क्विंटल सौंफ हो गई, 8-10 किलो आपने अपने लिए रखी, बाकी बेची, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन करके, पहले मैंने देखा है जब लोग खेती करते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि जो जितने उनके यहाँ इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें खेत में पैदा हो जाए, बाकी चीजें जैसे नमक है या कुछ और चीजें वो बाजार से लाते। आप देखिए कितनी बड़ी बात, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता का जो एक संदेश है जो हम अक्सर कहते हैं, उसको एक तरह से मूर्त रूप देना हुआ। तो बहुफसली व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन में हमेशा उपयोगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फार्म हाउस या लंबे रकबे वाले किसान बहुत कम होते हैं।
1: पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके द्वारा दी गई जो समस्त जानकारियां हैं वो सभी किसान भाई और हमारे फसल उत्पादकों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और
0: जी,
1: उपयोगी भी है। डॉक्टर साहब से मिलने वाली समस्त जानकारियों के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन का जो हमारे फसलों पर असर होता है, हम उस असर को नकारात्मक की जगह सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं। चाहे वो आप फसल चक्र अपनाकर करें या बहुफसली खेती के माध्यम से करें।
2: आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर ए.के. सिंह सर से सुनी कि बदलते मौसम के अनुसार हमको फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम इजाजत चाहेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम के अगले अंक में हम नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आजय खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सीतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
4: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
3: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
4: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
3: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
4: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
3: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
4: बिल्कुल आज है खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
3: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
4: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
3: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सहित्या जी?
4: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा।
3: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
4: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
3: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
4: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
3: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे मैं अपने फैसले समझदारी से ले सके?
4: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
3: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
4: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
2: लेकिन सेहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
4: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
2: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
4: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
2: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
4: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
2: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
4: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी ना किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सकें।
2: सेहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
4: देखिए आज ये खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
2: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
4: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
2: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
4: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की। फिर उनकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
2: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
4: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
2: क्या बात है सियातिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
4: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छ

0: स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: तो दोस्तों, सेहत सही
1: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत सही लाभ कई में। एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
1: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारे तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
6: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम सब उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
6: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है, तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है, पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
6: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
6: भाभी, आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
1: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
6: फिर क्या किया गया भाभी?
1: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
6: भाभी, बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
6: तो भाभी, प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
1: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
6: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड कैसे होता है?
1: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
6: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना। लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
6: और इससे बचने का क्या उपाय है?
1: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
6: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
6: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
1: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
6: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
6: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
1: पास के मोहल्ले में हन्नु काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नु को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
6: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
6: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
1: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
6: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
6: इससे बचने का उपाय क्या है?
1: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
6: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
1: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है, जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
6: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आँखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है, इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
6: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
1: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
6: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं, क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
1: बिल्कुल ठीक, बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं, उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
6: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
1: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं, अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है, कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
6: तो लोग इससे कैसे बचे?
1: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
6: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
1: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है, इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
6: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
1: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
6: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
1: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए, गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
6: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीली जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
6: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
1: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
6: तो फिर भाभी ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत। हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए। जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए। घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
6: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है। लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर आने से पहले हम लेंगे शपथ,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
6: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
6: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जाँच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
6: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
6: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
7: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियां भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है। नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने जाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तरह से।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपए कमा सकते हो। सोचिए, मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं, आप 2000 रुपए कमा सकते हो। उसने मुझे मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट दिलाया और धीरे उसने मेरे से एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला। मतलब होता है ना कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिल्ली, एनसीआर या मुंबई जैसे शहरों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर मुरादाबाद में ऐसी चीज होती है तो यार थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि अपने शहर में भी इस तरह की चीजें हो रही है। जी हाँ, खैर मैंने तो भाई साहब उसकी बातों में आके कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं दी और ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडबाजी है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे भी कोई नौकरी होती है या जॉब के लिए आपको कॉल आता है तो एकदम से आपसे कोई फीस या पैसे नहीं मांगता। माना कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूं कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें, इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे। उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
1: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं, और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आप नहीं, इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्या हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाई, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
0: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से। मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
1: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज की, तो कैसे, मतलब बताएं थोड़ा।
0: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ, जब घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन, मैं और मेरे घर सभी बच्चे। तो सडनली एक कॉल आता है, एक कॉल आता है जैसे कि आप कहते हैं
1: के लिए, आप बोल रहे हो
0: जी ऑनलाइन जॉब के लिए, के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यूज वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 to 3 hours। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही। पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 rupees देने पड़ेंगे।
1: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
0: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 rupees देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
1: क्या चला जाएगा। हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी।
0: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी और कम टाइमिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
1: ओके।
0: पहले उन्होंने 5,000 लिए, उसके बाद 10,000 लिए।
1: अरे बाप रे, अच्छा।
0: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
1: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते बच
0: गया। मैंने
1: पेमेंट दे देती है, अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप भी फंस जाती।
0: यस सर।
1: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, इन स्कैमर से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें ना वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी, तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं, आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM Moradabad 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें डीएम करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप कैसे बाहर निकले हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय है, छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं FM Moradabad 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, एक और बहुत ही मधुर मधुर गीत आपने सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ, इसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम और इसी में हम शामिल करेंगे, मतलब एक छोटी सी जानकारी से भरा ये इन्फॉर्मेटिव वाला छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
2: अरे इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
1: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं, फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच न माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे मत दीजिए, बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें, दस्तावेज सोच समझकर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जानकारी ही सुरक्षा है। जाते आते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए लेकिन आंखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज

0: धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276011001।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: हेलो, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। आप सभी को पता है कि देखिए जब भी हम आते हैं ना तो दोनों कुड़िया साथ में ही आते हैं गप्पे शप्पे करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हर किसी इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो उसके लिए हमेशा खास होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसकी एक मैसेज, एक कॉल देखकर ना हमारे चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। मतलब वो इंसान हमारे लिए बेहद खास होता है। आई नो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बेहद और बहुत ज्यादा खास भी होगा। कहते हैं ना, जिंदगी में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जिसके सामने आपको अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दुख छुपाना भी नहीं पड़ता है। वो बस देखकर समझ जाता है कि आज मन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबसे पुराना दोस्त हो या परिवार का सदस्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान अचानक जिंदगी में आता है और धीरे धीरे बहुत खास बन जाता है। आपके लिए भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई खुशी, तुम बताओ, तुम इतनी टहल क्यों रही हो, ये बताओ पहले।
2: टहलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं टहल रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद वही होता है जहाँ आपको हर बात बोलकर समझानी नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी चुप्पी से भी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। एक बात, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, और अचानक लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछने वाला है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में किसी गिफ्ट से कम नहीं होते, और हो सकता है आप रोज उनसे बात ना करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका एक मैसेज भी बहुत बड़ी उम्मीद दी जाता है। ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा इंसान समझने वाला नहीं मिलता।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और उस वक्त का साथ ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और जब चेहरे पर स्माइल नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है तब कोई एक इंसान अगर आपके पास खड़ा रहता है तो उसकी जगह जिंदगी में बहुत खास हो जाती है। उसने शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो, लेकिन उसने आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। और कई बार इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है।
2: और रीना, तुम्हें पता है, पुराने दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बातें ना हो, लेकिन जब फोन पर बात शुरू होने लगती है ना तो जैसे कल ही मिले थे। ना कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन, ना कोई हिसाब किताब, बस वही पुरानी हंसी, वही पुराने किस्से और वही बेफिक्री बातें। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारी यादों में वही के वही रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना दोस्त है जो आज, उसे एक छोटा सा मैसेज जरूर देना, यार याद आ रही थी। हो सकता है सामने वाले का पूरा दिन ही बन जाए। तो आप भी अपने दोस्त को मैसेज कीजिए ना जिनसे आपने महीनों बात नहीं की है, शायद आपका मैसेज का वो इंतजार कर रहे हो और उनका पूरा दिन बन जाए। या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके पास ही मैसेज कर दे, है ना दोस्तों। ये दोस्ती का रिश्ता ना बहुत खास होता है, चाहे आप दूर हो या आप नजदीक हो। तो इस दोस्ती के रिश्ते को ना हमेशा संभाल कर रखिए, और बीच बीच में वीकली, मंथली जब आपको टाइम मिले तो जरूर टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से मिले जुले, उससे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
1: हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। कभी वो माँ होती है, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादा दादी या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपकी बात ध्यान से सुनता है। उसकी खासियत ये नहीं कि हर समस्या का हल जानते हैं, उसकी खासियत ये है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। परिवार की यही छोटी सी खुशी हमें बाहर की बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए अपने घर के उस खास इंसान को कभी कभी बता भी दिया कीजिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इंसान खास हो ना, वो आपके लिए बेहद आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
2: कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में ना ऐसा वक्त आता है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन तभी कोई एक इंसान बोलता है, तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये चार पांच शब्द अंदर से कुछ बदल देते हैं, क्योंकि किसी का आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होता है। हो सकता है दुनिया आपकी कमी दिख रही हो, लेकिन वो इंसान आपकी पोटेंशियल दिख रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपकी क्षमता पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही को बोल रही हूँ, वो लकी पर्सन आप ही हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। और साथ ही साथ आजकल बहुत से रिश्तों में मतलब ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े रहते हैं। ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए, ना कोई फायदा, बस इसीलिए साथ है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। ऐसे लोग शायद ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और सच कहे तो जिंदगी में ऐसे लोगों की

0: कीमत किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा कहीं ज्यादा होती है। और जब आपके पास ऐसे इंसान हैं, तो मैं कहती हूँ उसको संजो कर रखिए, अपने पास से कभी दूर मत होने दीजिए। चाहे आप बात ना करें, लेकिन जब भी मिले तो आपको मिलकर ऐसा ना लगे कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं।
1: दोस्तों, हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें बदल भी देते हैं। कोई हमें कॉन्फिडेंस देना सिखाता है, कोई खुद के लिए खड़ा होना, कोई मेहनत करना, और कोई ऐसा समझाता है कि जिंदगी में हार के बाद भी उठना जरूरी है। हो सकता है वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसकी कही हुई कोई बात आज भी आपके साथ चल रही हो। ऐसे लोग हमारे सफर का हिस्सा भले ही कम समय के लिए बने हों, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा? आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए।
0: मतलब बात तो वही है ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके अंदर कोई कमी है तो उसको बताते हैं कि इस कमी को ठीक करो, तुम ऐसे करो तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता रखता है, मतलब के लिए दिखावे रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन काम गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कभी इंटरफेयर नहीं करता वो आपके लाइफ में। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं और आपकी गलतियों को हमेशा बताते हैं। किसी खास इंसान की पहचान हमेशा बड़ी बड़ी यादों से नहीं होती, कभी उसकी याद किसी छोटे से काम से आ जाती है। कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई चाय की खुशबू या फिर कोई पुराना डायलॉग सुनकर अचानक मन कहता है, अरे ये तो वो कहा करता था, और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। यही तो खास रिश्तों की खूबसूरती है। इंसान दूर हो सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती है।
1: सही समय पर सही इंसान का मिल जाना, साथ देना अपने आप में ब्लेसिंग्सफुल होता है एवरीवन। कभी कभी ना जिंदगी में कोई इंसान ऐसे समय पर आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी एक बात, एक सलाह, एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा था। जिंदगी में हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आकर ना हमें संभाल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते की उम्र नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का कुछ समय के लिए आना भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
0: जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है, आपने कभी नोटिस किया है? खास इंसान वही नहीं होता जो आपके लिए बड़े काम करे। कभी कभी वो इंसान खास इसलिए होता है क्योंकि उसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है, किस बात से आपको बुरा लगता है, आप परेशान होने पर चुप हो जाते हैं, ऐसी छोटी बातें याद रखना बताता है कि सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है। और आज के बिजी समय में किसी को इतनी अटेंशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, रेडियो किसी बिल्कुल नहीं घुमानी है, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें एंजॉय करते रहिए। आपके लाइफ में ना कोई पर्सन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आपने ये हैपनिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड अब हम बात करने वाले हैं हंसी वाले इंसान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरह होते हैं। इनके साथ 5 मिनट बैठो और मूड अपने आप ठीक होने लगता है। वो कोई जादू नहीं करते, बस अपनी बातें करके आपको हंसा देते हैं। कभी बेवकूफी वाली बात, कभी पुराने किस्से, और कभी ऐसी जोक कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे इंसान जिंदगी में ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हर दिन सीरियस रहने के लिए नहीं बना है एवरीवन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको बिना किसी वजह के हंसा सकता है, तो उसे जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले ना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो संभाल के रखो और खुश रहो।
1: दूर रहकर भी करीब, ये बहुत देखा जाता है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना हर कोई आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमेशा के लिए एक साथ रहते भी नहीं है। तो कुछ रिश्तों में दूरी सिर्फ जगह नहीं होती, दिल की नहीं। इंसान किसी दूसरे शहर में हो सकता है, रोज बात ना होती हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही कनेक्शन वही महसूस होता है कि फोन कॉल, एक मैसेज, और लगता है जैसे दूरी खत्म हो गई। ऐसे रिश्ते हमें बताते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए हमेशा उनके पास रहना जरूरी नहीं। अगर दिल में जगह है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती है। और चाहे आप कितने भी दूर रहो, और जब कॉल आती है ना तो भाई लगता ही नहीं है कि हम कब मिले हैं, यानी कि लगता है कि बस जस्ट अभी तो मिले हैं। और कैसे वही, यानी कि अनप्रोफेशनल वाली बातें हम करने लग जाते हैं, जैसे हम मिलते थे, बात करते थे, मतलब सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या बोले क्या ना बोले, मतलब जो दिल में आता है हम बोल देते हैं। तो वो होती है असली इंसानियत और असली दोस्ती।
0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उस वक्त अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुम कर सकते हो, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाला उसे पहचान लेता है। ऐसा इंसान सिर्फ दोस्त नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की वजह बन जाता है। और आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे पर्सन हैं जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं हर दिन। वो हमें कभी कभी ऐसा होता है, माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि कुछ चीजें होती हैं लाइफ में कि हम हिम्मत हार जाते हैं, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब कोई इंसान आए और वो हमें संभाल ले, हमें प्यार से दो शब्द कह दे कि आप कर सकते हो, विश्वास रखो खुद पर, तो एवरीवन यकीन मानिए, वो छोटी सी कही हुई बात ना इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है।
1: खास होने के लिए रिश्ते जरूरी नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत खूबसूरत है किसी इंसान का खास होना, हमेशा किसी रिश्ते के नाम पर डिपेंड नहीं रहता। जरूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई टीचर, कलीग, पड़ोसी, या कोई पुराना जान पहचान वाला आपकी जिंदगी में ऐसे जगह बना लेता है, मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपकी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेता है जिसे शब्दों में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता चाहे जो हो, अगर उस इंसान की मौजूदगी आपको बेहतर महसूस कराती है, तो वो इंसान आपके लिए बेहद खास होता है।
0: दोस्तों, आज के टाइम में सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट है। आप अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कंपैरिजन के, ना उन्हें जलन होती है। सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपकी अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ना उन्हें जलन होती है, ना वो आपकी खुशी छोटी करने की कोशिश करते हैं। वो सच में कहते हैं, मुझे तो तुम पर गर्व है। ऐसे लोगों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है। आपकी खुशी में ना हर कोई खुशी होने वाला हर कोई इंसान नहीं होता है, वो पर्सन बहुत लकी होते हैं और वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको खुश, आपकी खुशियों में वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जब आप एक छोटी सी भी कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं ना, तो वो प्राउडली उनका जो कहते हैं ना कि गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और हर एक छोटी छोटी चीजों को वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत को आप प्लीज जाया मत होने दीजिएगा। आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करें और जो भी आपके ड्रीम है आप उनको पूरा करें।
1: इसको कहते हैं निस्वार्थ प्यार, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो निस्वार्थ होता है। शायद आपको भी अपने जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद हो जब सब कुछ ठीक नहीं था, मन परेशान था, आंखों में आंसू थे और किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन कोई एक इंसान था जिसने उस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ा। शायद उसने सिर्फ आपकी बात सुनी थी, शायद कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी काफी थी। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हमें उस वक्त संभाला जब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे इंसान आपकी ताकत बनते हैं और मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपको भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ देना चाहिए।
0: अब दोस्तों, एक मैसेज की ताकत पता है ना, जब एक मैसेज आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारे चेहरे पर कहां हमारा मूड कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कभी कभी किसी खास इंसान का सिर्फ एक मैसेज पूरे दिन को बदल देता है। कैसे हो, खाना खाया, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, या बस एक सिंपल सा मैं हूं ना। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि असली बात मैसेज की नहीं होती है, असल बात होती है किसी ने आपको याद किया है, और जिंदगी में याद किया जाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। देखो, हम भी आपको याद करते हैं ना, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं एवरीडी।
1: और साथ ही साथ एक ऐसा पार्ट जब कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनता है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं, कुछ कुछ पन्ने तक रहते हैं, कुछ नई चैप्टर तक और कुछ पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी जगह होती है। कोई हमें हंसाता है, कोई सिखाता है, कोई संभालता है और कोई हमें मजबूत बनाकर चला जाता है। इसीलिए हर खास इंसान को उसकी जगह और उसके योगदान के लिए याद करना चाहिए हम। और कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मौजूदगी में मन शांत हो जाता है और ना कोई प्रेशर, ना कोई जजमेंट, ना खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत रियल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपको खुद को बदल कर नहीं बल्कि खुद बनकर रहे कंफर्ट मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहद खास है। और श्रोताओं, हम मुझे लगता है कि अब म्यूजिकल में ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है तो और भी मजा आ जाता है। तो बस हम लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूब लाई
0: गया। साले इतने हंसाए, तू कूद गया।
2: अब पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: एवरीवन, हमारी लाइफ में ना ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमें अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज हमेशा सलाह नहीं होती, कभी कभी बस किसी का साथ चाहिए होता है। ऐसा कोई जो बोले चल मैं तेरे साथ हूँ ना, उसने आपकी परेशानी खत्म नहीं की लेकिन उसने आपका डर कम जरूर कर दिया। और यही किसी रिश्ते की असली ताकत होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपके कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ा, तो शायद वो आपके जीवन के सबसे खास लोगों में से एक है।
1: और श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक याद आने वाला इंसान बहुत स्पेशल होता है। चाहे आप बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं और अचानक उसकी याद आती तो प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है और उस टाइम आपकी खुशी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल वाला होता है। दिन भर हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन दिन के किसी भी वक्त अचानक किसी एक इंसान का ख्याल आता है, कोई वजह भी नहीं होती, बस याद आ गया। यही बताता है कि वो इंसान हमारे मन में कहीं खास जगह बना चुका है। वो हो सकता है हम उसे रोज ना बताते हो लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तस्वीर जरूर होती है, उसकी यादें जरूर होती है, जो हमेशा उसकी याद कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट हो आ ही जाती हैं।
0: हमारी लाइफ का, जिंदगी का टीचर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ना हमारे टीचर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी सिखाई। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे समझना है, मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है और खुद की वैल्यू कैसे पहचाननी है। वो

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में 2 हवाई अड्डों पर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। हमले में 3 लोग मारे गए। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रियाद को निशाना बनाकर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को विफल किया। यूक्रेन में रूस के भीषण हमले से 25 लोगों की मौत और 100 घायल। और चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुंकोवा से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्यवाही से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: खाना कहाँ से मंगवाया?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
10: Let me share tricks for the upcoming BBD and Great Indian Festival sale.
11: You are about to see these tags everywhere. But here's the real question. Is the discount actually real? Or does it just look like a great deal? Look at this product. A big discount and a limited time deal. Looks like a deal you shouldn't miss. But here's the question. Are you getting real discount or just a discount tag? Now check the product price history. Prices hasn't dropped in the last 7 days. In fact, compared to a week ago, you are paying even more today. So that 75% batch doesn't mean you are getting a better price. This tag looks like a deal, but the price tells a different story. And that's not all. Here's where price comparison comes in. This product costs 79,990 on Flipkart, but Buy Hatke instantly shows you this product on Amazon for just 67,199. That's 12,791 rupees cheaper. Without comparing, you could simply end up paying more. And it doesn't stop here. Just tap the arrow showing and you will get an instant AI-powered deals inside. It can tell you if the current price is actually a good deal or not. So instead of trusting the price tag, you can see what's really happening here with the price. Found the product you want, but the price tag is still too high. Just set your target price with price drop alert. Tell Buy Hatke the price you are waiting for and it will notify you when the price drops. You can choose the price and buy it when it reaches it. So this sales season, check the price, compare the deal and buy when the price is right. Install the free Buy Hatke Chrome extension and try it yourself before you buy.
2: Yeah. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर में वह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
7: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
8: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती संगठन ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 नए क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वो पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। अधिकारियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को बेहतर ढंग से रोकने के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों और गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमरीका वार्ताकारों ने अक्टूबर के अंत तक तकनीकी स्तर पर यूक्रेन और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन ने इसमें भाग लेने की तत्परता व्यक्त की है।
12: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: One spot.
1: Let's go. Come on.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात आपदजान में कोटे दी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने विराहिमा ओतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबेजान में हुई बैठक डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया।
1: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। उधर मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई है। क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने रोमानिया की जोड़ी को हराया। ICC ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। T20 बल्लेबाजों में ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे, जबकि तिलक वर्मा 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में अक्षर पटेल 7वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में 2 हवाई अड्डों पर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। हमले में 3 लोग मारे गए। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रियाद को निशाना बनाकर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को विफल किया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। यूक्रेन में रूस के भीषण हमले से 25 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज कैरोलिना मोचोवो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा और मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ICC ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान

0: बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। जहाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
4: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
0: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
4: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
0: मुमताज जी की खास बात है, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
4: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
0: प्रेरणा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
4: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
0: क्या बात है परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
4: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
0: अरे यार पता है आपको, मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
4: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत नहीं हो सकता।
0: एग्जैक्टली राइट, और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
4: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
0: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
4: यस बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: श्रोताओ, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं, तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था, और वो तरह तरह की नई डिशेस बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का, वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए, उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था, अभी आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारी श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नच दी फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप नहीं मचाइए, बने रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में जाना, उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है, अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: और खाना समय खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट है और मुमताज मैम भी फिट है।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों, तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। नमस्कार, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और साथियों, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:09 और आप सभी का फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश। दोस्तों, कुछ रिश्ते ना आवाजों से बनते हैं, कुछ बातों से दिल में उतर जाते हैं और रेडियो का रिश्ता तो ऐसा है जहाँ चेहरा दिखाई नहीं देता और फिर भी अपनापन महसूस होता है। तो चलिए इसी खूबसूरत अपनेपन को आगे बढ़ाते हैं और हेलो फरमाइश में बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से। कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है? हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून डियर, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून दी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका?
1: जी, मैं आपका भीकनपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा रुकैया जी, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं दी, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छी होगी।
0: हाँ, अरे वाह, क्या बात है, बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड?
1: हमारे साइड मौसम तो अच्छा हो रहा है दी, सुबह से कभी तो ठंडी लग रही है और कभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दी।
0: हाँ, एक्चुअली जो वेदर है ना, आज ठंडी हवाएं चल रही हैं ना।
1: हाँ दी, कभी तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाली है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताइएगा कैसे हैं आपकी फैमिली में सब लोग?
1: मेरी फैमिली में तो सब बहुत अच्छे हैं दी, आप बताओ स्टूडियो में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, स्टूडियो में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्रेजेंटर्स अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप बताइएगा इस खूबसूरत दोपहर में कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो आज?
1: जी आज मैं अपनी बेस्टी के लिए एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: हाँ बताइएगा
1: जी, कल उसका बर्थडे था और मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, तो मैं आज उसके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।
0: ओ वाओ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपकी फ्रेंड को हमारी ओर से भी।
1: उसकी ओर से थैंक यू दी।
0: अच्छा, मोस्ट वेलकम। पार्टी कहाँ है भाई, हमें पार्टी वार्टी तो दो आप। हाँ
1: हाँ जी, आप आइए ना, आपको पार्टी मैं दूंगी उसकी तरफ से।
0: अच्छा हाँ, देखो यही पहचान होती है बेस्ट फ्रेंड की।
1: हाँ जी, यही होती है।
0: चलिए,
1: अरे वाह,
0: फिर तो उनका बर्थडे स्पेशल हो गया होगा क्योंकि आप जो उनके पास थी। हाँ
1: हाँ दी
0: जी, और कुछ कहना चाहते हो आप?
1: हाँ दी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त भी सुन रही है वैसे तो वो, पर वो भी कॉल लगाए, उनका भी कॉल लग जाए तो और ज्यादा ये खुशी दुगनी हो जाएगी।
0: चलिए, वो भी ट्राई कर रही होंगी कि जल्दी से मेरा कॉल भी लग जाए। और कुछ अपनी बहनों के नाम वगैरह लेना चाहते हो आप?
1: हाँ जी, मैं नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ जी,
1: ये ट्रैक तो मेरी दोस्त दक्षा फातिमा को ही डेडिकेट रहेगा।
0: ओके,
1: और साथ में मेरी सिस्टर है अफरोज़ फातिमा, रुकैया फातिमा, मैं खुद को भी डेडिकेट करती हूँ।
0: ओके चलिए, सबको सुनवाते हैं ट्रैक। सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आते हैं हम एंड आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक बर्थडे स्पेशल, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। और जब बर्थडे होता है ना, जन्मदिन होता है, तो एक अलग ही खुशी होती है ना। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है शानू।
0: शानू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, लखनऊ से बात कर रहा हूँ।
0: लखनऊ से बात कर रहे हैं, बताइएगा शानू जी कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैम, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या करते हैं आप सर, अपने बारे में बताइएगा।
1: मैम मुझे थोड़ा सिंगिंग का शौक बहुत है मुझे, और मुझे आपके साथ थोड़ा सा मतलब सिंगिंग का वो करना था।
0: अच्छा, आपको
1: ट्राई करता था आपको कॉल लगाने, लेकिन लगती नहीं थी कॉल।
0: फाइनली आज शानू जी आपकी कॉल लगी, कैसा लग रहा है आप पहले ये बताइएगा।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: खुशी हो रही है, चलिए।
1: एंड इतनी हो रही है।
0: ओके, एंड आपने अभी मुझे बताया कि आपको सिंगिंग का शौक है, तो कुछ गुनगुना कर सुनाइएगा सर हमें, और हमारी तमाम ऑडियंस आपको सुन रही है।
1: जी जी, आप सुनेंगे?
0: हाँ बिल्कुल सुनेंगे।
1: थोड़ा सुनना चाहूंगा रफी साहब का।
0: जी
1: सुना है आपको?
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएगा सर, हमारी ऑडियंस भी सुन रही है।
1: वही सॉन्ग मैम प्ले कर दीजिएगा आप थोड़ा हमारे लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली
1: सुनिएगा मैम। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
0: अरे वाह, क्या बात है शानू जी, बहुत कमाल का आपने गुनगुनाया है।

0: सबों पे हर एक सुर सजाया हो, जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
1: हाँ जी, बहुत ही प्यारा आपने गुनगुनाया है सर, एंड आपकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है। और ये सिंगिंग का शौक आपको कब से लगा, मतलब कब से आपके सर पे सवार हुआ कि मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए?
2: मैम, मुझे सिंगिंग का शौक काफी टाइम से है।
1: ओके,
2: मैं समझदार हुआ हूँ जब से मुझे सिंगिंग का शौक है।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छा आपने गुनगुनाया है सर। और कुछ कहना चाहते हैं आप?
2: बस कुछ नहीं, बस जितने भी ऑडियंस है सब, सबका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ताकि मैं जो कोशिश करना चाहता हूँ वो मेरी कोशिश पूरी हो सके।
1: डेफिनेटली सर, एंड आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना प्यारा आपने गुनगुनाया है, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, बस आप मेहनत करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। या मैंने कहा आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया सर, और सुनवाते हैं आपको आपका फेवरेट ट्रैक। या मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, हमारे साथ जुड़े थे शानू जी लखनऊ से, और ये ट्रैक सुना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में, जो कि खुद भी उन्होंने गुनगुनाया है, बहुत ही प्यारा गाना है। मैं आती हूँ अभी वापस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप कहीं मत जाइएगा, हमें कॉल लगाइए आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी।

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: फरमाइश, जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा बेन, केम छो तमे?
0: मजा मा, तमे केम छो?
1: अमे मजा मा छी।
0: हाँ बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सब?
1: मैं सुन रहा हूँ आकाशवाणी मुरादाबाद कच्छ गुजरात से।
0: अच्छा गुजरात से आप बात कर रहे हैं, गुजरात में कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका?
1: कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्व कच्छ का जो है, दसवा तालुका है।
0: अच्छा।
1: उसमें बात कर रहा हूँ।
0: ओके, और बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बस बढ़िया है। और मुरादाबाद आकाशवाणी परिवार कैसा है?
0: हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं, फैमिलीज में फिर मुरादाबाद में। एंड आप मुझे बताइएगा कैसा मौसम है गुजरात का?
1: गुजरात का मौसम तो ऐसे बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी धूप है।
0: अच्छा।
1: दोपहर के टाइम पे थोड़ी थोड़ा धूप लगता है और शाम सवेरे थोड़ा ठंडक रहता है।
0: जी अभी मौसम में चेंजेस आ गए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं?
1: मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है क्रांतिवीर।
0: हाँ,
1: उसमें एक गाना है, फूल कली चांद सितारे ये सब क्या है, नाम तुम्हारे, ये गाना सुनना है।
0: अरे वाह क्या बात है, आपने तो अच्छा गुनगुनाया है। और ये गीत हम आपको सुनवाते हैं सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत उदित नारायण जी साथ में साधना सरगम जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ एंड आनंद मिलन जी का म्यूजिक है और लिरिक्स हैं समीर जी के। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। मैं लौट कर आऊँगी अभी इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9838 3978 96 8।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना साधना सरगम साथ में उदित नारायण जी की आवाज और खूबसूरत सी फिल्म क्रांतिवीर जो 1994 में आई थी। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, सबसे पहले फकीर जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा आप। सो
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत आप बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं इशरत जी आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और रिफ्रेश हो जाते हैं। मैम हम आपका इंतजार करते रहते हैं कब 3 बजे और कम प्रोग्राम सुने कॉल लगाए।
0: अच्छा, तो जिस दिन कॉल लगाते हैं उस दिन शो सुनते हैं या रेगुलर आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं
0: अच्छा रेगुलर सुनते हैं। तो बताइएगा इशरत जी, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम मूवी है कुछ दिल ने कहा गाने के बोले मेरी नींद चुरा ले। मैम आज की फरमाइश में यार सॉन्ग प्ले कर देना, को सुनने वाले हैं।
0: जी बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये ग्राम बीवीपुर से मकसूद भाई, ग्राम खेड़ाटांडे से मोहम्मद कामिल, स्वागत है विजय राठौर सातनापुरम।
0: ओके, तो आपके सभी साथियों के साथ सुनवाते हैं गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका सर।
1: थैंक यू, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए विवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्राई उदित नारायण जी की आवाज़ में, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी जी के और बहुत ही प्यारा गाना है। बिना किसी देरी के सुनते हैं इस खूबसूरत ट्रैक को।

0: एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है, शो का नाम हेलो फरमाइश है। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी कुछ दिल ने कहा, उदित नारायण जी की आवाज़ और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। तो चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है, माय लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका ट्रैक फेवरेट कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। वैसे आपका मन भी है कोई गाना सुनने का तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल के जरिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 1 3 7 8 9 6 8 9 6, इस नंबर पे कॉल लगाइए, खुशी से बात कीजिए और अपना फेवरेट गाना हमें बताइएगा, हम आपको भी सुनवाएंगे। तमाम हमारे श्रोता हैं, आपकी पसंद शायद उनको भी पसंद आ जाए। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हाय दी,
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फादिया बात कर रही हूँ, मैम कैसी हो?
0: दरक्षा जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ
0: मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बेलेटेड बर्थडे भैया, सेलिब्रेट किया है आपने, हमें तो इनवाइट भी नहीं किया। हाँ
1: थैंक यू मैम, मैंने आपको, मैं सोच रही थी कल मेरी कॉल ही नहीं लगी।
0: अच्छा कल कॉल नहीं लगी, ओहो, कल आप बहुत बिजी थे ना, इसलिए आपने प्रयास भी किया होगा। तो फिर जब फैमिली में फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग ही बात होती है, बट आपने कोशिश तो की होगी कि काश मेरा कॉल लग जाए और ऑन ईयर बातचीत हो जाए, है ना? तो कैसा रहा आपका बर्थडे बताइएगा डियर, क्या स्पेशल किया आपने और क्या क्या गिफ्ट मिले हैं जरा बताओ मुझे।
1: बहुत सारे गिफ्ट मिले और बहुत अच्छा रहा मेरा कल।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। वंस अगेन
1: थैंक यू मैम,
0: आप हमेशा खुश रहिए, हमारी यही दुआएं हैं और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब आपके कंप्लीट हो जाएं।
1: आमीन
0: जी। और बताइएगा आज आपने हमारे साथ कनेक्ट हुए कॉल पर, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, बेबी मेरे बर्थडे पे तुम के दिलवाओगे।
0: ओ हो, क्या चाहिए आपको बताओ हमें। बोलो बोलो, शांत क्यों हैं आप?
1: मैम बहुत कुछ चाहिए, आप तो अभी नहीं बता रही, मैं जब ही बताऊंगी।
0: अच्छा जब ही बताएंगी, जब आप हमसे मिलेंगी?
1: हाँ।
0: अच्छा चलो ठीक है, हम इंतजार करते हैं और ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी मैं, मेरी दोस्त है रुकैया फातिमा और मेरी सिस्टर है नजमा अपी राबिया और लाइबा काजमी अफरोज फातिमा, मेरी कजन सिस्टर है इल्मा रानी।
0: ओके अच्छा, वो कजन आपकी सिस्टर हैं, कजन सिस्टर हैं आपकी?
1: हाँ मैम।
0: अच्छा हाँ, आपने नाम लिखा था ना सुबह, आई रिमेम्बर मॉर्निंग में।
1: हाँ मैम सुबह मैंने मैसेज में नाम
0: जी
1: लिखा
0: जी जी जी। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ट्रैक आपका फेवरेट, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए डियर, एंड वंस अगेन तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक। नहीं नहीं खाली हाथ बिल्कुल नहीं आएंगे, हम आपके लिए तोहफा जरूर लेकर आएंगे, टेंशन ना लो आप।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम हेलो फरमाइश है और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
1: जी, आदाब खुशी जी, क्या हाल है?
0: हाँ जी आदाब, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मजे से
0: है। हाँ जी, नाम बताइएगा आप अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइएगा सब।
1: मेरा नाम जी आसफ है और मैं इटली से बात कर रहा हूँ।
0: इटली से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसा लगता है आपको एफएम मुरादाबाद सुनना?
1: बहुत अच्छा लगता है, हम तो सुबह से लेके सोने तक एफएम सुनते हैं। कोई भी ऐसा आपका शो या प्रोग्राम नहीं है जो मिस होता है।
0: ओह, हमारे रेगुलर लिस्टनर हैं। और बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे से जी, आप सुनाए कैसे हैं?
0: बिल्कुल सर,
1: आप ठीक हैं? पूरी एफएम ठीक।
0: हाँ
1: टीम
0: जी,
1: जो है
0: एफएम की टीम बहुत ही अच्छी है, आप सबकी दुआएं हैं और हम अपना भी ख्याल रखते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि इटली का मौसम कैसा है? मुरादाबाद का वेदर भी बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है, हवाएं भी चल रही हैं। आप बताइएगा इटली का मौसम कैसा है सर?
1: इटली का मौसम सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है, उसके बाद दोपहर में मौसम जब धूप निकलती है थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अभी थोड़ी देर कुछ दिन के बाद तकरीबन सर्दी बिल्कुल अच्छे स्टार्ट हो जाएगी।
0: ओके, तो बताइएगा सर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं?
1: एक सॉन्ग है तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, ये वाला सॉन्ग प्ले कर दो।
0: अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप सर?
1: नहीं, बहुत शुक्रिया, कॉल लगी तो चलो बहुत अच्छा लगा आज।
0: थैंक यू सो मच, हमें भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। और सुनवाते हैं आपका पसंदीदा गीत।
1: बहुत शुक्रिया जी,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। मैं वापस आती हूँ लौट कर, आप कहीं बचाइएगा, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:02 और अभी आपने सुनाया खूबसूरत सा गीत तेरा गम मेरा गम।

और दोस्तों इस खूबसूरत गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति जी ने, साथ में हरिहरन जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी की।

0: और साथियों, आज भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाने वाले पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता नाना पाटेकर जी का 75वें वर्ष की आयु में गोवा स्थित उनके आवास पर अंतिम उन्होंने सांस ली और आज हम उन्हें भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एंड अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, नमस्कार
0: जी। अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम प्रभात सैनी
0: है। प्रभात सैनी जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप।
1: मुरादाबाद
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: बढ़िया
0: जी। बताइएगा क्या करते हैं आप सब, अपने बारे में बताइएगा।
1: मैम अपना पूरा राइटर ही हूँ, लिखता
0: ही हूँ। अच्छा अच्छा ओके।
1: और बस अपना खाना काम
0: है। अच्छा अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब। अच्छा, नाम फिल्म का गाना आपको सुनना है, ठीक है, सुनवाते हैं आपको सब। जी बिल्कुल सुनाइएगा।
1: मैं तो गिनता हूँ रात को तारे, मगर गिनती मुझसे पूरी नहीं हो पाई। मैं तो गिनता हूँ रात को तारे, मगर मुझसे गिनती पूरी ना हो पाई। जो चला गया मुझको छोड़कर, क्यों उसी की याद हो आई।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारी सी शायरी थी आपकी सर। जी नमस्कार। और सुनिएगा पंकज उदास जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत चिट्ठी आई है एंड मैं वापस आती हूँ। अभी आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 98 378 96, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल लगाइएगा।

0: अरे मेरा फोन हमेशा बिजी।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम भी यही कहते हैं आपसे, अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। और अगर अकेले जा भी रहे हैं ना तो काला टीका लगा के जाया करो, इन्हें सोने हो आप। हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको नजर लगे। एवरीवन, मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और शो का नाम हेलो फरमाइश। आप भी इस फोन इन कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं या फिर किसी स्पेशल पर्सन को भी डेडिकेट कर सकते हैं कोई ट्रैक। तो चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
1: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सो एकता कॉलोनी से बात कर रहे हैं जी, बताएगा कैसे हैं आप? सो
2: बढ़िया।
1: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है। आप बताएगा, आज हेलो फरमाइश में आपका कॉल लगा है, क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ जी बताएगा, मैम के लिए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या नाम है मैम का, जरा बताइएगा हमें। सीमा रानी। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा सा नाम है उनका। तो चलिए मैम को आप ये स्पेशल ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, सुनवाते हैं हम, एंजॉय कीजिएगा आप। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गाना लता जी की आवाज में। मैं वापस लौट कर आती हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के इस बार, आप भी कॉल लगाइएगा, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा हमारा शो। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर। ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
4: कौन है ये?
3: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
5: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
3: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मेरे साथ में यहाँ पर अखिल जी कनेक्ट हो गए। हाय अखिल सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग।
1: हेलो खुशी, आप कैसे हो? गुड इवनिंग।
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ और फाइनली आपसे बातचीत करके तो और अच्छे हो गए हैं। आपका शाम का शो सुनकर हमारी शाम खूबसूरत हो जाती है।
1: सच में ऐसा है क्या?
0: हाँ रियली। एंड मैं इवनिंग में आपको सुनती हूँ। मैं किचन में कुछ ना कुछ उस समय पे करती हूँ, खुराफाती कुछ बनाने का स्पेशल सोचती हूँ।
1: सच कहूँ तो अभी ये जो आपने बात बोली ना, उसके बाद मुझे एक बात याद आ गई। अभी एक लिसनर थे अभी जिस दिन आप नहीं थी, आपको याद है आप कौन से दिन नहीं थी?
0: मंडे। हाँ, I remember।
1: तो मंडे को ना आपके ही एक लिसनर ने कहा था कि आज हम खुशी मैम को बहुत मिस कर रहे हैं और हमें अच्छा लगा कि आप आए हैं।
0: हाँ जी।
1: और खुशी मैम को हमारा हेलो जरूर भेजिएगा। तो वो मंडे से आज हो गया और आपका हेलो जो है मैं आपको उनका दे नहीं पाया अभी तक।
0: अच्छा, तो आज आपने हमें उनका हेलो पहुंचा दिया है हम तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइएगा अखिल जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: सब बढ़िया है, हाल चाल बढ़िया है। और कहते ना, एकदम बाहर निकलो अंदर तो एसी, बाहर पसीना।
0: हाँ, ये दोनों चीजें हो जाती हैं। तो और भी वेदर भी चेंज हो रहा है, तो इस समय में अपना विशेष

0: भेज देना सबसे पहले तो आप ही भेजेंगे मुझे मालूम है इसलिए आपने बोला
1: मैंने ऑन एयर कंफर्म कर लिया
0: जी। अच्छा आखिर सर मैं जानना चाहती हूँ आज आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं कैसे लग रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
1: आपके साथ तो हमेशा मतलब एक कहते हैं ना दो दूनी चार वाली कंडीशन होती है बहुत ही अच्छा लगता है आप जिस तरीके से बात करती हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कितने दिन बाद मिले हैं या हम स्टूडियो में भी एक्चुअली क्या होता है हमारी टाइमिंग्स अलग रहती हैं तो मिलना हमारा बहुत मुश्किल हो पाता है मगर जब भी हम मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं खुशी से तीन चार दिन बाद मिला हूँ या दो दिन बाद मिला हूँ।
0: ओके थैंक यू सो मच माय प्लीजर्ड एंड बताइएगा आज आप की पसंद का मैं गाना सुनना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को भी सुनवाना चाहूँगी इवन आप सबको सुनवाते हैं अपना अपनी फरमाइश सबकी फरमाइश आप सुनवाते हैं आज मैं आपकी फरमाइश जानना चाहती हूँ आज क्या सुनवाना चाहते हैं आप।
1: आज आप सुना दीजिए ओ हम दम सुनियो रे।
0: अरे वाह क्या बात है यार अमेजिंग।
1: आज मैं देख रहा था जब भी आ रहा था तो रास्ते में बिल्कुल सेम ऐसी एक भाई बंदा जो है बाइक पे चलता था और ऐसे लहराता मैंने कहा भाई हाँ। वो हमदम सुने ना सुने मगर पुलिस वाले जरूर
0: सुन लेंगे एग्जैक्टली exactly. तो चलिए एवरीवन केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा आप एंड कीप स्माइलिंग चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखिए वो बहुत जरूरी है क्योंकि खिलखिलाता हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। और सुनिएगा ये अमेजिंग ट्रैक थैंक यू सो मच अखिल सर आपने मुझे ज्वाइन किया एंड अच्छा लगा शो में चार चांद लगे आपके साथ आपकी जो मुस्कुराहट है दिल जीत लेती है। अच्छा पानी पी लीजिए पहले आप

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 शो का नाम हेलो फरमाइश। और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 4:35 एंड हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई हैं। तो बिना किसी देरी के उनसे बातचीत करते हैं। और अखिल जी की जो फरमाइश थी ना, सच में अमेजिंग थी एंड माइंड एकदम कूल हो गया है हमारा। और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, क्यूट क्यूट क्यूट क्यूट, गुड इवनिंग मेरी खुशी मैम जी।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर, इतना प्यार से आपने गुड इवनिंग विश किया है ना। हाय मैं वारी जावा।
1: ये तो आपका बड़प्पन है मैम, मैं बोल पाती हूँ।
0: और दसो जी की हाल चाल थोड़े।
1: मेरे हाल चाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं।
0: हाँ जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ रोशनी, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है परिवार में सब लोगों की।
1: परिवार में बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। अब अभी तो शादी चल रही है, कुछ दिन में नवरात्र आ जाएंगे।
0: हाँ जी,
1: और ट्रिप का प्लान बन चुका है।
0: ओ वाओ, कहाँ पर जाने वाले हो आप
1: इस बार। हम जाएंगे काशी विश्वनाथ और इधर वाराणसी, और फिर हम अयोध्या जाएंगे। जितने भी उधर के आसपास है हम सारा घूम के ही आएंगे, कम से कम हफ्ते का है हमारा प्लान।
0: अच्छा, 1 वीक है। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली घूम कर आइएगा आप। और बताइए रोशनी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी न्यू ऑडियंस भी इस वक्त सुन रही है। तो आप अपना एड्रेस बताइएगा, मतलब पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं, सिर्फ आप जा रहे थे वहाँ का।
1: हाँ मैं वही का बताऊँ।
0: हाँ जी,
1: हाँ मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, और बताइएगा चंडीगढ़ का मौसम कैसा है।
1: चंडीगढ़ में मौसम बहुत अच्छा है, कल अचानक से बारिश यहाँ भी हुई थी बहुत जोर से।
0: अच्छा, इवनिंग में।
1: हाँ जी, नहीं दोपहर में हुई थी।
0: अच्छा, दोपहर में हुई थी बारिश। ओके, अब तो मौसम काफी चेंज हो गया है ना रोशनी।
1: बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है और अचानक से ठंड पड़ रही है।
0: हाँ वही ना।
1: हाँ मेरी दीदी है चंडीगढ़ से, जो सुबह उनसे बात हुई तो कह रहे थे बारिश भी हो रही है और इतनी ठंड पड़ गई हम कंबल ले लेके सो रहे हैं।
0: हाँ जब बारिश हो जाती है ना तो रैंडमली वेदर चेंज हो जाता है, तो फिर ब्लैंकेट की नीड तो पड़ती ही है।
1: जी मैं तो वैसे ही चद्दर लेके सोती हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती बिना चद्दर के।
0: अच्छा तो बताइएगा रोशनी, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अपने यहाँ का मौसम बताइए ना कैसा
0: है। हमारे यहाँ का जो वेदर है, बाहर खिलखिलाती धूप है और हवाएं चल रही हैं।
1: यहाँ भी धूप है लेकिन देख कम रही है हमारे यहाँ भी।
0: अच्छा, और आप हमारे एक आरजी को जानते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, इवनिंग में शो करते हैं।
1: जी मैम।
0: क्या नाम है उनका।
1: नाम
0: मैं भूल गई हूँ। मुझे पता था नाम उनका है अखिल, और अभी वो मेरे साथ लाइव हैं, तो आप उनसे भी बात कीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल मैम, निखिल सर से बात कर रही हूँ। आज दिन निखिल
0: नहीं, अखिल।
1: अखिल,
0: हाँ जी अखिल।
2: कोई नहीं मैम, चंडीगढ़ से चलते चलते अखिल निखिल हो जाता है।
0: अच्छा जी,
1: बिल्कुल सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप।
2: नमस्कार मैम, आप बताइए कैसी हैं। चंडीगढ़ का मौसम आप बता रही थी, तो इस समय तो चंडीगढ़ के मौसम में तो
1: वैसे तो कल बारिश हुई थी लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है,
0: क्लीन है,
1: धूप खिली हुई है।
2: अच्छा, और मैम मौसम और अच्छा कब होता है, जब मतलब इतना अच्छा मौसम के बाद आप कहीं घूमने जाओ और कोई साथ में हो तो और भी अच्छा होता है ना।
1: जी सर, और मेरा तो मतलब जो होता है ना, तो हमारा एक ग्रुप होता है जिसमें हम कम से कम 20 लोग तो होते ही होते हैं। अभी हम लगभग 15 लोग हो चुके हैं जिनकी टिकट कन्फर्म हो गई है।
0: ओके,
1: और अभी कुछ लोग जो छूट गए हैं वो भी जाते वक्त वेटिंग में चल जाएंगे।
2: हाँ मैम कोई नहीं, वो तो आप बगल में उन्हें एडजस्ट कर लेंगे।
0: और
1: किसी के पेड़ कल हो रहे, किसी के पेड़ पर, इस वजह से दुविधा में है।
0: लेकिन जब जाने का समय होगा ना, जिसका बुलावा होगा वो तुरंत चला ही जाएगा, हैंड टू हैंड प्लान बन ही जाता है,
2: इंस्टेंट प्लान।
0: हाँ
2: जैसे इंस्टेंट मैगी बनती है ना 2 मिनट में।
0: हाँ जी, और आप ही बनाते हैं, आप ही बना पाते हैं अखिल सर वो वाली स्पेशल वाली मैगी।
2: हाँ ये तो है, उसके बाद से मेरी स्पेशल वाली मैगी के बाद से तुमने कभी मैगी नहीं खिलाई।
0: अच्छा जी, मैंने 2 बार बना के आपको खिलाई है मैगी, पता है आपको सर।
2: चलो आज फिर तीसरी बार और।
1: आपकी मैगी खाने का।
0: अरे आप आइएगा, आपको मोस्ट वेलकम है डियर। मोस्ट वेलकम, बताइएगा रोशनी जी आज क्या सुनना चाहेंगे आप।
1: आज मैम अपनी पसंद
0: सुनाइए
1: और हमारे अखिल सर की
0: पसंद का। अखिल सर की पसंद का, ओके ये तो सुनना चाहते हैं जनाब। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, किसने चुराई है अखिल सर आपकी नींद, मुझे पहले बताओ।
2: मेरी नींद तो 12 साल पहले चोरी हो गई थी।
0: अच्छा 12 साल पहले चोरी हो गई थी, तो वापस नहीं आई क्या अभी तक। थैंक यू सो मच डियर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके रोशनी. बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो आप और एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल ट्रैक. तो चलिए एवरीवन, अखिल सर की देखिए दूसरी रिक्वेस्ट भी अखिल सर की यू नो यहाँ पर प्ले होने वाली है. बहुत लकी है सर आप, कैसा लग रहा है आज?
2: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: आज कैसा लग रहा है?
2: आज ये लग रहा है तीसरी रिक्वेस्ट भी मेरी ही जाएगी.
0: अच्छा जी, ओके, चलिए देखते हैं कि थर्ड रिक्वेस्ट किन की होती है, अखिल सर की होती है या नेक्स्ट कॉलर की. तो एंजॉय कीजिएगा गाना, अभी लौट कर हम आते हैं.

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Hey, you're a tune into FM Muradabad, 89.6 FM.
8: हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल एवरी लिसनर्स। वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है 4:43। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
9: हेलो,
8: हाँ जी सर, नमस्कार।
9: नमस्कार
8: जी, अपना नाम बताइएगा आप।
9: अरे के पास में मोहन तकत्तर गांव प्रताप से बोल रहा था
8: जी। अपना नाम बताइएगा सर।
9: जितेंद्र बोल रहा था जी।
8: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी सर? कौन से गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
9: तुम मेरे फिल्म का गाना है।
8: हाँ जी,
9: जिसका टायर टूट भी जाए दिल ना किसी का टूट पाए।
8: अच्छा चलिए सुनवाते हैं गाना आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। तो चलिए फिर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना उदित नारायण जी की आवाज में। मैं बस आती हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, चाहे आप मुझे कार में सुन रहे हैं, अगर कार में आप मुझे सुन रहे हैं, और जो आपके साइड में पर्सन बैठे हैं आप उनसे भी कॉल लगाने के लिए कह सकते हैं। एंड और अगर आप अभी सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बस मुस्कुराइए, सीट बेल्ट जरूर बांध दीजिएगा, और हाँ गाने आपकी पसंद की भी हम प्ले करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करने की नीड नहीं है, आपके दिल की बात हम जान ही देंगे।

0: गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। आप सभी का फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत से गाना दित नारायण जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम, मैं बिलोक मुंडा पांडे से, ग्राम गोविंद जिला मुरादाबाद से बाजी गली मिस्त्री बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बस बढ़िया मैम, काम चल रहा है, बस बोल सैम का काम, आपकी फरमाइश खत्म हो जाएगी, हमारा काम भी खत्म हो जाएगा।
0: जी बताइएगा, कौन से गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: मुझे गाना सुना दीजिए, जिंदगी की टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
0: क्रांति फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं ना? ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना।
1: सुनने वाले मैम हमारे रिहान भाई है
0: जी,
1: और फिर दोस्त
0: ओके,
1: और साबेस और अब्दुल अहद
0: ओके। ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनिएगा आप अपनी पसंद का ये प्यारा सा गाना। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो गए हैं और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ढेर सारी बातें करेंगी, यानी कि 2 घंटे के लिए आप सभी के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं। और आपका ध्यान मैं के इधर उधर हो तो मैं के जी अब 5 बज चुके हैं रेडियो की सुई में, यानी कि और अपनी घड़ी के टाइम जरूर देखिए क्योंकि 5 बजते आज रीना आप सभी के साथ आ जाती है देश दुनिया की बातें करने के लिए, साथ ही साथ अपने लोकल की बातें करने के लिए। और जो अभी तक रामलीला ग्राउंड में मेला देखने नहीं गए हैं, जो मेरे जैसे हैं क्योंकि हम भी देखिए पास में रहते हुए भी हम नहीं गए हैं, तो आप दूर के होंगे तो क्या ही प्लानिंग बन पाती होगी। लेकिन मैं एक बार आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि एक बार आपको यहाँ पर आके विजिट जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका दिमाग कहते हैं कि मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो उनको जितना रामायण दिखाएंगे ना और महाभारत दिखाएंगे तो उनका दिमाग उतना ही शांत होएगा। तो एक बार अपने बच्चों के साथ यहाँ विजिट करिए क्योंकि अब की बार हटकर है, कुछ अलग ही यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं और जो अपनी कलाओं के साथ हर किसी के साथ, मतलब एक रामायण जो आप फिल्मों में देखते थे वो आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो आप आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। आज की तारीख 8 अक्टूबर बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है, बहुत अच्छे अच्छे डेज मनाए जाते हैं, सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनते हैं, फिर मैं लौट कर आती हूँ।

0: I'm Jamie Heineman.
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज। रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:16 हो चुके हैं। और ये जो समय होता है ना, बीच वाला, यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 8 बजे तक, इस समय में ट्रैफिक आपको बहुत मिल जाते हैं। 5 बजे थोड़ा हल्का फुल्का होता है, लेकिन जैसे शाम के 6 बजते हैं, 6:30 होते हैं, उस टाइम आपको भरपूर मात्रा में ट्रैफिक मिल जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऑन द वे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करिए। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले। और कहीं भी आप चाहे 2 कदम की दूरी पर जा रहे हैं, चाहे आप दूर जा रहे हैं, तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना ना भूलिए, क्योंकि शाम का वक्त है और नवरात्रि का रंग भी बाजारों पर चढ़ चुका है। मार्केट में शॉपिंग के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इसीलिए सड़कों पर भी गाड़ियों का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस टाइम देखिए, अब हर कोई नवरात्रि के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देंगे और अच्छे से फिर घर की सजावट, मंदिर की साफ सफाई को लेकर हर किसी के दिमाग में यही ख्याल चलता रहता है। तो जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पेशेंस के साथ आपने गाड़ी चलाना है और अपने घर आराम से पहुंच जाना है। ये नहीं कि भैया आप चाय हमारी छूट जाएगी, चाय बिल्कुल नहीं छूटेगी। जब भी आप जाएंगे आपको चाय मिल जाएगा पीने के लिए, बहुत से चाय पी भी रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चाय के चुस्कियों के साथ आप हमारा रेडियो सुनते रहे और ये मत सोचे कि भैया हमें जल्दी पहुंचना है और हॉर्न पे हॉर्न बजाना है। हॉर्न तो आपने बहुत कम बजाना है, क्योंकि आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो बाहर इंसान है उसकी काने ना, मतलब वो कहते कि यार बस बंद करो और कितना बहरा करोगे मेरे को। तो इस चीज का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और चलिए एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के साथ और करते हैं हम क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे और क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अपडेट्स बहुत सारे मेरे पास, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज जो बहुत ही स्पेशल डेज मनाया जाता है, तो उसके बारे में बात करना तो बहुत ज़रूरी है।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई.
2: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है. सानू निगम जी की आवाज में, श्रेया घोषाल जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना पिया भोले. ओह माय गॉड, मुझे पता है कि ये गाना आपका फेवरेट है और आप इस गाने को सुनकर ना मुस्कुरा भी रहे हैं मंद मंद, है ना. मुझे पता है जी, आप ऑन द वे भी है और रेडियो का वॉल्यूम भी आपने बढ़ा लिया है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे गाने प्ले होते हैं ना तो दिल अपने आप कहते हैं कि भैया वॉल्यूम बढ़ाओ और इन्जॉय करो और अपने सफ़र में निकल जाओ. फिलहाल समय की बात करूँ तो 5:26 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में आर्जेरीना के साथ आपके लिए. और आज का डे वाकई में बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है. और स्पेशल क्यों है, सोचिए आसमान में जब कोई लड़ाकू विमान इतनी तेजी से निकल जाए कि हमारी आंखें भी उसे ढूंढती रह जाए, तो समझ जाइए भारतीय वायुसेना अपना दम दिखा रही है. आज मनाया जाता है 94 भारतीय वायुसेना दिवस. हर साल 8 अक्टूबर को ये दिन उन वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है जो देश की आसमान से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं. और एक बात तो माननी पड़ेगी, हम जमीन पर खड़े होकर विमान को ऊपर जाते देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं. सोचिए जो जवान हजारों फीट ऊपर जाकर देश की रक्षा करते हैं, उनका जज्बा कितना बड़ा होगा. भारतीय वायुसेना सिर्फ आसमान में उड़ान भरने का काम नहीं करते हैं, बल्कि शौर्य, साहस और समर्पण की पहचान है. तो आज आसमान की तरफ एक बार जरूर देखिएगा, हो सके कि कोई फाइटर तीज आपको देखकर कह रहा हो, अरे भाई नीचे आराम से रहो, ऊपर की ड्यूटी हम संभाल रहे हैं, बस तुम आराम से रहो. और देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सभी वीर जवानों को भारतीय वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. जय हिंद, जय जवान. चलिए एक और गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला, क्योंकि जब हमारे देश के सेना हमारे लिए कुछ करते हैं ना, तो मतलब हम अपने घरों में आराम से रहते हैं और जब वायु विमान उड़ाते हैं, सोचिए उनका दिल कितना बड़ा होता होगा. और अभी की बात करूँ तो स्मिथ जी ने अपनी जान पर खेलकर इतने लोगों की जान बचाई थी. दिल से सैल्यूट है ऐसे ऐसे फाइटरों की, वायुसेना की. चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत दुखद भी बात है. आई नो कि आप सभी को पता चल गया होगा, सुबह सुबह अगर आपने फोन उठते ही देखा होगा तो आपको एक खबर मिली होगी जो कि बड़ी दुखद खबर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन पहले एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में कनेक्ट होते हैं.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

देखिए भैया, किसी का दिल मत चुराइए, जिसका आपने दिल चुराया ना उसको लौटा दीजिए। सच बता रहे, बहुत पाप लगेगा आपको, हाँ, वरना फिर उसको हमेशा के लिए अपने पास रखिए, दूर मत जाइए उससे। अगर आपने किसी का दिल चुराया है तो, अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपको माफ करेंगे, अदरवाइज भगवान बोलेंगे कि तुमने उसका दिल चुराया, और चोरी करना महापाप होता है। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, तो आप रेडियो सुनेंगे ना तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, इसीलिए आप 5 बजते ही रेडियो सुनना शुरू कर दिया करिए। और सुबह से लेकर, यानी कि सुबह हमारा रेडियो 6 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। यहाँ पे बहुत अपडेट्स की बातें चलती है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अपने लोकल की बातें करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट और आपकी फरमाइश भी हम यहाँ पर पूरी करते हैं। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी आप काम करते रहें, हमारा रेडियो सुनते रहिए। और ये नहीं कि आप गाड़ी में हैं तभी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं, बल्कि आप खेत में हैं, किचन में हैं, घर पर है, कहीं भी है आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। और आप ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे सुन सकते हैं, हम तो रेडियो सिर्फ गाड़ी में ही सुन सकते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ऐप है। और आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और ऐप स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है FM मुरादाबाद 89.6, रेड कलर का आपको लोगो दिखेगा और उसको आपने डाउनलोड करना है, और आप कहीं भी सुन सकते हैं हमारी रेडियो की आवाज। लेकिन उसके लिए डाउनलोड तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मिस कर जाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए डाउनलोड जरूर करिए और हमारे रेडियो के साथ जरूर कनेक्ट होइए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज बॉलीवुड ने अपना एक बेहद दमदार कलाकार खो दिया, नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, यानी कि 75 साल की एज में आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। नाना पाटेकर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, लेकिन क्रांतिकारी जैसे फिल्मों ने उन्हें घर घर में खास पहचान दिलाई। उनका डायलॉग, बोलने का अंदाज और उनकी आवाज आज भी लोगों के जहन में बसती है। जब भी आप सोचेंगे ना, उनकी आवाज हूबहूब उनका फेस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, नाना सिर्फ फिल्मों के ही दीवाने नहीं थे, क्रिकेट की उन्होंने दिल में बहुत करीब था, यानी कि मैच के वो बहुत और बेहद दीवाने थे। उनके यानी कि पसंदीदा, अगर मैं क्रिकेटर की बात करूं, सबसे फेवरेट वाला क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेटर की बात करूं, तो वो है किंग, जिनको किंग बोला जाता है, विराट कोहली। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते थे ना, तो उनका खाना खाने का मन भी नहीं करता था, वो खाना ही नहीं खाते थे, क्योंकि विराट कोहली के वो इतने ज्यादा फैन थे कि जैसे वो आउट हुए खाना छोड़ देते थे कि भैया आज मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। सोचिए, एक तरफ सिनेमा का इतना बड़ा कलाकार, दूसरी तरफ विराट कोहली के लिए बिल्कुल आम क्रिकेट फैन जैसे दीवानगी। मतलब होता है ना हर किसी का, भैया वो चाहे कितना बड़ा ही कलाकार क्यों ना हो जाए, उनके भी फेवरेट कोई ना कोई जरूर होते हैं, उनमें से थे विराट कोहली। आज नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मतलब नहीं रहे, आज नहीं रहे वो, उनके फिल्म और उनकी आवाज और विराट कोहली के लिए इनका ये प्यारा सा जुनून हमेशा याद रहेगा। नाना पाटेकर जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि, ओम शांति हमारे पूरे रेडियो की टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से। और ऐसे ऐसे कलाकार ना, मतलब कुछ कलाकार ऐसे होते हैं इनकी तरफ कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि हर किसी इंसान का अलग किरदार होता है, हर किसी के अंदर एक अलग फीचर होता है कि जो वो काम कर सकता है आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कलाकार जिनको आप सिर्फ याद कर सकते हो, उनके जैसा दूसरा कलाकार आप नहीं देख सकते हो, उनमें से थे नाना पाटेकर जी। और राजकुमार के साथ ना इनकी जोड़ी बहुत शानदार बताई जाती थी, और डिंपल कपाड़िया के साथ ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बनाई हैं। और बस हमारी तरफ से ओम शांति, और चलते हैं एक और गाने की तरफ, इस गाने को एंजॉय करते हैं, और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं भैया आपकी रेडियो स्टेशन पर ही। हां जी, मैं रेडियो के से बिल्कुल नहीं आपने घुमानी है, आरजे रीना के साथ आपको कनेक्ट रहना है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: कहता हूँ

हेलो दिलजीत दुसांझ जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है इश्क दी बाजिया। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं भैया, चाहे चीनी चाय में हो, चीनी कम, समोसे हो, क्रिस्पी, लेकिन आरजे रीना आप सभी के साथ शाम 5 बजे ज़रूर कनेक्ट हो जाती है। समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं। देखिए हमारे इधर क्या होता है कि दशहरे पर हम रावण दहन करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर दीपावली के पावन अवसर पर ही रावण जलाया जाता है। आखिरकार उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर्दी शुरू होने वाली है और इसमें अपने डाइट का और खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मौसम बदलते ही हमारे डाइट भी थोड़ा बदल जाता है। अब सवाल ये है कि सर्दियों में फल कब खाएं ताकि शरीर को भरपूर एनर्जी और विटामिन्स मिले। तो सबसे अच्छा समय की बात करूँ तो सुबह नाश्ते के आसपास या दिन में जब आपका पाचन भी अच्छा रहता हो, और सुबह सुबह तब आप खा सकते हैं। और सुबह सुबह आप संतरा, अमरूद, पपीता या सेब जैसे फल ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको विटामिन ए चाहिए तो पपीता, जो कि सर्दियों में बहुत आसानी से मिल भी जाता है और थोड़ा सस्ता भी हो जाता है, तो आप पपीता ज़रूर खा सकते हैं। ये लीवर के लिए भी सही होता है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत मददगार है, साथ ही साथ स्किन और इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूर खाना चाहिए। और लीवर के लिए तो बहुत रामबाण माना जाता है, तो आप पपीता ज़रूर खाएं, पाचन को भी अच्छा रखता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, हम फ्रूट्स खा लेते हैं, उसके बाद कुछ गलत चीज़ें खा लेते हैं जिसका इफ़ेक्ट अलग ही बॉडी पर दिखाई देता है। तो फल को खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, आपको उसके बीच में गैप ज़रूर रखना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का गैप आप ज़रूर रखें। अगर आपको ज़्यादा ही नीड लग रही भैया चाय की तो 1 घंटे बाद पीजिए, लेकिन इस बीच में आप बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी मत पीजिए। तो सर्दियों के फल डाइट के हिसाब से मत रखिए, बस सही समय पर खाइए और मौसम का मजा एनर्जी के साथ उठाइए, क्योंकि जबकि आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी ना तो आप मौसम का आनंद भी नहीं उठा पाएंगे, आप बाहर नहीं जा पाएंगे कि नहीं या ठंड लग रही है हमें तो हम नहीं जाएंगे बाहर। तो जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। चलिए अब बात करें तो 5:55 हो चुके हैं और हम बात करने वाले हैं, यानी कि हमारे यहाँ विजयादशमी को दशहरे का रावण का दहन किया जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर दीपावली के पावन अवसर पर ही रावण का दहन किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल ये जग घूमिया वाला गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, क्योंकि हर कोई शाम को बाहर निकल जाता है घूमने के लिए, तो ये गाना ना सुना तो आपकी शाम फीकी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही राहत फतेह अली खान जी की आवाज में बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया। साथ ही साथ विशाल शेखर जी की आवाज में ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर गाना। जग घूमिया लेकिन थारे जैसा कोई नहीं है भैया, जिससे प्यार हो जाता है उसके अलावा दुनिया में चाहे कोई खूबसूरत या कोई कितना अच्छा इंसान क्यों ना जाए, उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल आप सभी के मैसेज भी हैं, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। सो मैसेज की बात करूं तो हमारे पास आसिफ जी कनेक्ट होते हैं। दुनिया में भी गुड इवनिंग रीना जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। हाँ जी मैं बिल्कुल मस्त ठीक, और आपकी मीठी मीठी बातें और प्यारे प्यारे गाने सुनकर शाम और भी खूबसूरत हो जाती है। बस ऐसे ही आप अपना शो करते रहिए, और सच कहूं तो आपके शो का मुझे बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच जी कि रीना जी आएंगी और अपनी आवाज और मस्ती के साथ ये शाम और भी शानदार बना देंगी। और एक और बात कहूं तो सुबह सुबह जैसे हम उठे तो हमने देखा कि जैसे फोन उठाया तो नाना पाटेकर जी का निधन हो गया है आज, और उन्होंने कई उनकी जो फिल्में हैं उनकी अदाएं हैं उनकी आवाज़ है उनके डायलॉग है सच में बहुत मिस करेंगे। और उन्होंने हंसाया भी, गंभीर किरदार भी किए, लेकिन बहुत ही शानदार रहा। और भगवान से यही कहना चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। और एक ये फरमाइश करना चाहते हैं जी, बिल्कुल आज हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं ये जो गाना आप सुनना चाहते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते, जिंदगी के सफर में, ये किशोर कुमार की आवाज में है, ओल्ड इज गोल्ड गाना है। तो डेफिनेटली इस गाने को हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सुनवाने के लिए। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो खुशी जी, कैसी हो आप? लेकिन खुशी जी 5 बजे तो नहीं आती हैं जी, रीना जी आती है 5 बजे, लगता है कि आप सो रही हैं और आपको टाइम का पता नहीं लगा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी 3 बजे, लेकिन 3 नहीं बजे हैं, करेक्ट 6 बज गए हैं। तो चलिए फिलहाल अभी लौट कर आती हूँ आप सभी के साथ और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। बस आप यूँ ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूँ तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:08 हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर की अगर मैं बात करूँ तो रावण को दशहरे वाले दिन जलाया जाता है, यानी कि और अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर दीपावली के पावन अवसर पर रावण दहन किया जाता है। हमीरपुर में यानी कि देश भर में विजयादशमी पर रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड के राठ में रामलीला की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ दशहरा पर नहीं बल्कि दीपावली की अवसर पर ही यानी कि दीपावली की अमावस्या की शाम रावण का दहन किया जाता है। अमावस्या के शाम ही रावण की दहन किया जाता है, वो भी दीपावली के दिन ही। यानी कि ये जो परंपरा है 106 वर्षों से चली आ रही है। अनूठी परंपरा देखने के लिए लोग आसपास के गांवों कस्बों से हजारों लोग रामलीला मैदान पहुंचते हैं और इस रामलीला की तैयारियों से जोरों शोरों से करते हैं और दीपावली के अमावस्या के रात यानी कि रावण की दहन कर दी जाती है।

तो भैया हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा होती है और उसी मुझे लगता है कि वही हमें फॉलो भी करनी चाहिए, और क्योंकि जहाँ के जैसे रीत वैसे ही, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश है वैसा भेष है, वैसे ही आप भी उसमें हमें कनेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप रामलीला ग्राउंड में मेला देखने आ रहे आज की शाम तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि आज राम जी का विवाह होएगा, तो आप ज़रूर आइए, सीता स्वयंवर ज़रूर देखिए। और एक बात ही मुझे याद आया, सीता स्वयंवर से जो राम जी धनुष उठाते हैं, क्योंकि जनक जी ने तो प्रण ले लिया होता है कि जब तक कोई ये धनुष नहीं उठाएगा और तब तक हम सीता जी की शादी नहीं करेंगे, यानी कि जो धनुष उठाएगा वही उसी से सीता जी की शादी की जाएगी। लेकिन स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में वो धनुष लेकर आता तो आता कौन है, क्योंकि राम जी के अलावा उसको कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन दूसरा इंसान कौन है जो सीता स्वयंवर में उस धनुष को लेकर आया था, सोचिए और मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9837896896, क्योंकि उसको उठाने वाला भी कोई आम इंसान नहीं होगा ना। तो दिमाग में कभी ख्याल आया है या नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिरकार सीता स्वयंवर में जो धनुष है वो लेकर कौन आया था, सोचिए और महसूस करिए। फिलहाल के लिए एक और गाना आप सभी के लिए हम प्ले करते हैं, बस यूं ही आर्शो रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। और इसके बाद हम आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। फिलहाल तो आपने यही बताना है, सीता स्वयंवर में जो धनुष है, जो धनुष था उसको लेकर आया तो आया कौन था, ये आपने बताना है हमें मैसेज करके जी। सोच लीजिए आखिरकार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल मेला वाला एक गाना सुनते हैं, आपको सुनवाते हैं मेले नु चलिए।

0: तेरी कमी महसूस होती है। मैंने लगता है मैंने तेरे नाल प्यार हो गया।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, हर दिन जो प्यार करेगा। और उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, हर दिल जो प्यार करेगा। कुछ गाने बहुत ही सुकून भरे होते हैं, जैसे शाम को आप उन गानों को सुनते हैं ना, तो बस दिल यही कहता है कि वाह, ऐसे गाने बस सुनते रहना चाहिए ना। ओल्ड इज़ गोल्ड और 90s के सुपर हिट गाने जब आपको सुनने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन वो गाने सिर्फ और सिर्फ हमारे रेडियो पर ही सुनने को मिलेंगे आपको, यानी कि आपके शहर का इकलौता सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल समय की बात करूँ तो समय हो चुका है हमारे पास, यानी कि आपकी और मेरी घड़ी में 6:20। अगर किसी घड़ी में 21 हो रहे हैं तो कोई बात नहीं जी, आपकी घड़ी ख़राब है फिर तो। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं, जरा वेदर की बात कर लेते हैं भैया। अभी टेम्परेचर की बात करूँ तो 30 से 28 पर आ चुका है मुरादाबाद का टेम्परेचर, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। आसपास बारिश की संभावना जताई जा रही है। ज़रूरी है कि मुरादाबाद में बारिश नहीं हो रही भैया, तो कहीं और नहीं हो रही होगी, ज़रूर होती है। और वेदर की बात की जाए तो 22 राज्यों में तूफान बारिश की संभावना जताई जा रही है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आंधी चलने वाली है। और ये 22 राज्य कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और कल है यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 3 दिन तक बारिश बताई जा रही है। अपने मुरादाबाद में टेंशन मत लीजिए, थोड़ी बहुत फुहारे वाली बारिश आएगी, अदरवाइज वो भी नहीं आने वाली, लेकिन आसपास इलाके में ज़रूर बारिश आएगी। क्योंकि अगर कल शाम की बात की जाए ना, तो भैया अगर आपने बादल को देखा होगा तो कड़क कड़क वाली आवाज़ आ रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं आई। वही कहते हैं ना, जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं है, वो बात सच है भैया। क्योंकि कल बादल गरज रहे थे, लेकिन दिल उनका रो रहा था कि हम नहीं बरसेंगे, हम अपने आंसू अपने अंदर ही पी लेते हैं, क्यों रोना है, क्यों आंसू बर्बाद करने। तो सही बोले, आंसू बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेला लगा हुआ भैया, सब मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए आप अपनी आंसू को पी जाइए, अपने अंदर ही पी जाइए। चलिए फिलहाल हमारे पास कुछ मैसेज भी हैं, मुझे लगता है कि वो भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती है, हेलो प्यारी प्यारी, गुड इवनिंग, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद कनेक्ट हुई हैं आज। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद सारिक अली जी, मिराज अंसारी, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। आपका सो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच सर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं, और इनका कहना है कि गुड वाली इवनिंग है जी, वेरी वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये शाम सुहानी है और आपका शो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सीमा जी कनेक्ट होती हैं, ये रामलीला ग्राउंड के पास से या आसपास एरिया से ही हैं, और इनका कहना है कि आज मैं आपका शो पहली बार सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने की तो बात ही मत करिए, मतलब अब मैं चाय पीते कब, अब मेरा चाय का कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है, बस काम करने का मन नहीं कर रहा, बस शो सुनने का मन कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैम, हमारा रेडियो आपको ये नहीं बोलेगा कि काम मत करिए, कोई भी रेडियो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे टाइम दो, बल्कि हमारा रेडियो ऐसा है, काम करते करते भी आप रेडियो एंजॉय कर सकते हैं। बस किचन में हैं तो आप रेडियो प्ले करके छोड़ दीजिए और आप खाना बनाते रहिए, देखिए आप कैसे चुटकियों के अंदर खाना बना लेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये है रेडियो की, ये होती है रेडियो की कमाल। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं भैया, एक गाना सुनवाते हैं आपको, उसके बाद लौट कर आते हैं और करेंगे और भी ढेर सारी बातें जी। चलिए फिलहाल गाना सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा मस्त वाला। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहो ना चाहो लेकिन हम तुम्हें मजबूर कर देंगे चाहने का। कभी आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है जी, नहीं किया

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो, और समय की बात करूँ तो 6:31 हो चुके हैं। और कहते हैं ना, अपना व्यवहार कुछ ऐसा रखिए कि टूटा हुआ इंसान भी आपसे मिलकर मुस्कुरा दे। अपने व्यवहार में, अपना व्यवहार हमें ऐसा रखना चाहिए। और हमारे पास कुछ मैसेज है, और ये मैसेज आता है हमारे पास रीना जी। जय श्री राम, क्या हाल है आपके? जय श्री राम सर, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि कल आपका शो मैंने नहीं सुना, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सर, थोड़ा कभी कभी काम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ मैंने आप सभी से आज ये भी पूछा था कि सीता स्वयंवर में जो धनुष लाया, तो लाया कौन था वहाँ पर? ये मैंने आप सभी से पूछा है, जो कि मेरे लिए, मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि सीता स्वयंवर में जो धनुष राम जी तोड़ने वाले थे, उसको लाया कौन था वहाँ तक, सीता स्वयंवर तक? सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर। भैया मैसेज करना है बहुत ही आसान, मैंने क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, जल्दी जल्दी बताइए।

हाँ जी, 5 बजते ही आप सभी कनेक्ट हो जाते हैं आर चोरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूँ तो 6:39 हो चुके हैं। और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में यानी कि 15 साल बाद करीना कपूर और शाहरुख खान एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, भैया हर कोई चलाता है, बच्चा बड़ा बूढ़े हर कोई, सीनियर सिटीजन हर कोई व्हाट्सएप चलाता है। और बल्कि बात की जाए डॉक्यूमेंट्स भी सेम हम व्हाट्सएप से ही करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ना अब चेंजेस होने वाले हैं। वो क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज मैंने आप सभी से एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि सीता स्वयंवर में धनुष लेकर आया तो आया कौन था, क्योंकि राम जी के अलावा तो उसे कोई और उठा नहीं पाते ना, तो आखिरकार उसे उठाकर सीता स्वयंवर में लाया तो लाया कौन था। चलिए मैसेज की तरफ देखते हैं, याद हो तो मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो यही क्वेश्चन मैंने 2025 में इसी मतलब अक्टूबर के महीने में ही आपसे पूछा था। अगर आपको याद होगा तो आप आराम से मैसेज आपके राइट वाले आ गए होंगे, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग को तो लगाना पड़ेगा। बहुतों के राइट आंसर तो नहीं आए हैं, एक ही लगता है भैया उन्हीं को पता है कौन है कौन है कौन नहीं है। चलिए फिलहाल मैसेज देखते हैं आप सभी के और देखते हैं किनका हमारे पास राइट आंसर आता है कि सीता स्वयंवर में धनुष आखिरकार लेकर आता तो आता कौन है। मैसेज की बात करूँ तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अरे सर किस दुनिया में आप खो रहे हैं, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग हो चुका है। और आनंद जी नहीं है, रीना जी हैं, शाम को आरजे रीना आ जाती है आप सभी के बीच। कोई बात नहीं जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात करूं तो कोमल शर्मा जी का कहना है परशुराम है जो धनुष लेकर सीता स्वयंवर में आए थे। ओके कतई आपने तो भैया रुख ही चेंज कर दिया है। अगले मैसेज की बात करूं तो भैया रीना जी बोलती हैं, बोलना चाहती हूँ, अच्छा चाहती हैं या चाहते हैं आप।

चलिए फिलहाल अगर मैं मैसेज की बात करूं तो हमारे पास मैसेज अभी तक तो भैया किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है। हाँ, ये अंसार हुसैन जी कहते हैं भैया राम जी, अरे राम जी ने तो सर प्रत्यंचा चढ़ाई थी यानी कि धनुष के ऊपर और धनुष टूट गया था। मेरा क्वेश्चन ये था कि सीता स्वयंवर में धनुष लेकर आया तो आया कौन था, क्योंकि जब वहां लेकर आया गया तभी तो राम जी ने उसको उठाया था ना, तो उस धनुष को वहां पर लेकर आया तो कौन आया। सोचिए मेरे पास राइट आंसर आ चुके हैं लेकिन आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए यही है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने मैसेज किया है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो सर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपना नाम जरूर बताइए। और चलिए अभी एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि व्हाट्सएप में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या नहीं आने वाले। उससे पहले एक और धमाकेदार गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

दिया दिलेर मेहंदी की आवाज में, बड़ा ही खूबसूरत गाना। हाँ जी, समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं। आरजोरीन आप सभी के बीच फिर से कम बैक कर चुकी है। और बात ये है भैया कि व्हाट्सएप की हम बात कर लेते हैं, हर कोई चलाता है ना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर बदल रहे हैं तो इन 5 नियमों का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले पुराना अकाउंट चेक करें। सेकेंड, व्हाट्सएप वेब से नंबर नहीं बदल सकते। थर्ड, नंबर बदलने से पहले बैकअप लेना है वो जरूर ले। नंबर के साथ फोन भी बदल रहे हैं तो भी आपको कुछ चीज़ों का रीस्टोर ज़रूर करें, क्योंकि भैया नंबर कभी फ़ोन चेंज कर देते हैं और दूसरे फ़ोन में सिम डालते हैं ना, तो हम जो चाहते हैं, जो बैकअप लेना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है, तो उस चीज़ का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को पता चल सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन, देखिए अगर आपने जो आपने पुराने नंबर से अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, अगर आपने सोचा कि नया नंबर लेते हैं और वहीं पर हम नंबर चेंज कर देते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो हमारा नंबर है, पर्सनल नंबर है, वो कहीं शेयर ना हो, तो वो हो सकता है, क्योंकि आपने वहाँ पर नंबर चेंज करा है, ना कि आपने दूसरा अकाउंट बनाए हैं। तो इस चीज़ का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। बाद में ये मत कहिए कि भैया किसी ने बताया नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और आज का कड़क सवाल यही है भैया, बस आज मैंने पूछा था और आपने जवाब देना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पता होना इसके बारे में हर किसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सीरियल में और कहीं पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में ना वही रहता है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या थी, बात क्या नहीं थी, उसके बारे में हमें प्रॉपर पता नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा है कि आखिरकार सीता स्वयंवर में जो धनुष है वो लेकर आया तो आया कौन था। बहुत से सोचेंगे कि राजा दशरथ जी के जो सेवक थे वो लेकर आए होंगे। बहुत से कह रहे कि परशुराम। देखिए अगर आप परशुराम से मिलना चाहते हैं तो आप रामलीला ग्राउंड में आइए, हम आपको परशुराम से साक्षात दर्शन करवाते हैं, मिलवाते हैं। और आपके पास अगर राइट आंसर है तो आप हमें मैसेज करिए, नंबर है 9837896896, कि सीता स्वयंवर में आखिरकार जो धनुष है उसको लेकर आया तो आया कौन था। बस इतना सा सोचना है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, वरना सिर में दर्द हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हल्के हल्के सोच के साथ सोचिए और हमें मैसेज करिए। चलिए फिलहाल एक और गाना हम सुनवाते हैं आप सभी को और फिर मैं लौटूंगी, और देखना ये भैया कि किनका हमारे पास क्या भैया राइट आंसर आया है या नहीं आया है। ये तो बस आप ही सोच सकते हैं भैया कि राइट आंसर आखिरकार क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज के ही होंगे। चलिए जी, धुरंधर फिल्म से धुरंधर बवाल मचाते हैं।

चलिए जी, अब बारी ही आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं भैया, कि किनका हमारे पास क्या राइट आंसर आया है या नहीं आया है, क्या आप सही सोच पाते हैं या भैया अभी लगता है कि नहीं भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मैं कहती हूँ जी सोच लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा घाटा कुछ नहीं है, आपका ही घाटा घाटा है। मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया लगाया। फिलहाल आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है भैया। हाँ जी, आप सब राइट आंसर पहुंचा ही देते हैं हमारे पास। हाँ भैया, अंसार हुसैन जी का कहना है कि भैया पिनक जी लेकर आए थे जो उनके सेवक थे। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी। इनका कहना है कि सीता स्वयंवर में जो धनुष लेकर आए थे राजा जनक और उनकी सेना लेकर आए थे। अच्छा जी, राजा जनक जी और उनकी सेना लेकर आए थे, इनका ये कहना है। ओके चलिए, अगले मैसेज की बात करती हूँ तो क्या कहते हैं ये सुनिए जरा ध्यान से, कान खोल कर सुनिएगा भैया, अदरवाइज मिस कर जाएंगे बहुत सी चीजें। राधे राधे जी, राधे राधे जी, और इन्होंने बहुत प्यारी शायरी लिखी है जो मैं कोशिश करना चाहूंगी पढ़ने की। चलिए, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, हाय हाय हाय हाय, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। ये बेचैन भी थे लेकिन रात भर लिखते रहे। छू रहे थे सभी बुलंदियां आसमान की, छू रहे थे सभी बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरफ छुपता रहा। हाय हाय, अकड़ होती तो कब का टूट गया होता, मैं नाजुक घड़ी में भी सभी के आगे झुकता रहा। क्या बात है, क्या लाइनें लिखी है सर आपने। ये हमारे साथ पता है किन्होंने ये खूबसूरत लाइनें लिखी है, मैं बताती हूँ, भूपेश शर्मा जी नगर पंचायत पागबड़म मुरादाबाद से कनेक्ट होती है। और इनका कहना है कि धनुष के बारे में बात करते हैं अब। भगवान शिव के धनुष पीनक को जनक राजा के जो सेवक दरबार में लेकर आए थे, जो एक पहिए लगी हुई थी गाड़ी के द्वारा राजा जनक के दरबार में हजारों सैनिक साथ में लेकर आए थे, क्योंकि उसको उठाना संभव नहीं था। लेकिन सोचिए, जिस पहिए पर रखा गया उस पर उठा के किसने रखा, अब क्वेश्चन ये भी आता है ना। चलिए, पहिए पर रख दिया तो उठाकर सबने धक्का लगाया तो वो आ गया वहां पर, लेकिन मैं बात ये आती है कि उसके ऊपर रखा किसने, है ना। तो चलिए, हमारे पास राइट आंसर भी आ गया भैया, बहुत पहले उन्होंने मैसेज कर दिया है, तो अब हम बढ़ते हैं उनके मैसेज की तरफ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत मैसेज किया है इन्होंने। हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सुभाष जी, और इन्होंने राइट आंसर दिया है, और इनका कहना है कि सीता जी। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, कि सीता जी ही उस पहिए पर भी सीता जी ने ही उठा कर रखा था। और अगले मैसेज की बात करूं जो दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं अखिल जी, रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सभी के साथ रहते हैं, तो इन्होंने भी भैया गाड़ी में होंगे ये, और इन्होंने हमें मैसेज कर दिया है कि खुद सीता जी। ओके, तो मैं आपको बता दूं पीछे की कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब सीता जी सफाई कर रही थी तो उन्होंने जो धनुष था वहाँ पर उसको उठाया और बड़ी आसानी से उठाकर वहाँ पर सफाई की और वहाँ पर रख दिया। तब राजा जनक जी उन सीता जी को देख लिया था भैया कि ये जो धनुष जो कोई भी नहीं उठा पाता वो सीता जी उठा रही हैं। तब जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि इस सीता के इस धनुष के ऊपर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मतलब जो भी इसको उठाएगा, सीता जी की शादी उन्हीं के साथ की जाएगी। तो वो उठाया किसने, राम जी ने, लेकिन उसको लेकर और उस पहिए पर किसने रखा, सीता जी ने, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और भाई उठा ही नहीं सकता था, उसको नहीं उठा सकता था भैया। सीता जी ने उठाया, राम जी ने तोड़ा। चलिए, ये है आज का राइट आंसर, अब आगे तक याद रखिएगा। भूपी शर्मा जी कहते हैं भैया सीता जी। ओके सर, चलिए अब इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास के इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोइन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: गोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है। अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए। यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए, आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़ कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटे ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना, सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान,
1: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान ना रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
8: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, आई मीन यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। तो शिका आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात, और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती। तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं। फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002243 0।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफकोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट आप रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई, आपके घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शायराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जी हाँ। और भैया देखो, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं। वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहां बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनकी आवाज बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई अच्छी रही।
4: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ये पहली मुलाकात है। वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपने नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
5: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
4: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसे लग रहा है ऑफिस में, आप आए पहली बार, आप रेडियो पे आयो? उससे पहले कभी नहीं आयो?
5: नहीं।
4: अच्छा,
5: बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
4: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
5: आनंद भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
4: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
5: बीएससी कंप्लीट,
4: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
5: अब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
4: क्या बात है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
5: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था, लिखता था, लिखने लगा, आगे को बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे, चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर, लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा। फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन में, वहां से इंट्रक्शन हुआ।
4: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था। मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए। क्यों भाई?
5: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड
4: था। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से। बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है जरा बताओ।
5: आनंद भाई, मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
4: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं मगर हसी तुम्हें देखा तो शायरी आ गई। हाँ, हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है, तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजे आनंद के साथ ये जो कन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना।
1: हाँ
0: है ना। हाँ। अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चलो फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: इसमें कहना चाहूंगा, सबको किसी न किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी न किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार।
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। अब ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बचता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे, आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे? तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो उसकी याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना, कुछ होना हो उसकी यादें जरूर हमारे साथ होती हैं। आप सब कुछ बुला सकते हो, लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना, लोग कहते तो हैं, अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं बदलती
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगी तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था, आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी, मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो, आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ, लेकिन इसमें भी

0: थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
1: अरे यार तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे चिप दे भाई।
0: बताता हूँ ना, बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
1: अरे नहीं बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल।
0: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
1: कुछ दोस्तों को तो पा लिया।
0: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
1: क्या हुआ,
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
1: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी एक दूसरे के लिए, हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हो गई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो?
0: हाँ छह
1: कुछ कुछ
0: कह सकते हैं,
1: कुछ कुछ है,
0: कह सकते
1: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
0: हाँ हर किसी को नहीं टकराते
1: है ना, मजे की बात ये भी है।
0: हाँ।
1: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
0: बहुत ज्यादा।
1: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
0: बनाना चाहता
1: है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
0: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते
1: है ना।
0: अब जस्ट इमेजिन हर कोई मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त भी,
1: मतलब तुम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
0: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
1: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी के की बात नहीं है बॉस।
0: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
1: मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
0: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी, हाँ, कोई ना कोई तो,
1: हाँ,
0: अब आपकी उसमें कहते हैं ना मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उसपे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
1: अच्छा मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
1: हाँ भाई, हाँ भाई,
0: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी।
1: क्या बात है,
0: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी, खूबसूरत तो वो बहुत है पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका।
1: वाह,
0: वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका, है बहुत हंसी पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच,
1: क्या
0: so
1: बात
0: much.
1: है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा, हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है।
0: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन मैं ऐसी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके,
1: भाई मत कर यार मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन है आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इस एरिया का, अमरोहा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है?
0: हाँ डिस्ट्रिक्ट।
1: ऑल राइट, और ये आप कहाँ रहते हो? जोरा के आसपास,
0: इकोंदा।
1: ऑल राइट, मुझे ऐश्वर्य राय बच्चन के गाना है ना बड़े मेगा मेगा, उसमें वो बोलती है बनाएंगे एक बातों का घरौंदा, और ये जहाँ रहता है वो है
0: इकोंदा।
1: चलो गाइस एक काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था, एक गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है? सुनो, सुना है। आपकी आवाज है, बहुत प्यारा गाना है, उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके ही मत जाइए, सुंदरी आनंद को

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आइयो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है। विलन्स?
0: आइयो मां, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। So, यार देखो ये थी जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी इंजॉय कर रहे हैं, तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा यार अजीम, आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है, मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था, आजकल क्या होता है ना प्यार बाद में होता है, पहले लोग देखना पसंद करते हैं कि पहले पिक्चर भेजो मैं देखना चाहता हूँ, पहले दिखते कैसे हो एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना, और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना जो बेकरारी वही इश्क है ना, और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव इट्स अट्रैक्शन है ना, तो एक वो हो गया। लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना, तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें।
0: हाँ,
1: जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं,
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाती हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
0: क्या बात है यार,
1: सो मच,
0: वंडरफुल यार, यार हर बात पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में, है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया यार, आजकल प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है देखो, डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
1: मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने,
0: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है, है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने
1: इस पे, तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
0: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
0: करेक्ट यार,
1: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा,
0: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनके कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना जी, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं। नया नया जब प्यार होता है, एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जब नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
1: तब तो मोहब्बत होती है। लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
0: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
1: तो तारीफ है उसके बालों की।
0: अरे वाह,
1: अब जैसे लड़की की बाल है, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
0: क्या बात है,
1: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है

0: ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
1: हाँ मैंने खुद ने,
0: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो, तो मतलब बता दे मुझे किसके भैया भैया वाल है?
1: है कोई बहुत पसंद है लेकिन अब वो किसी और की पसंद में कैसे बता सकता हूं
0: भाई मुझे बात। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है।
1: हाँ
0: और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
1: मोहब्बत ही वही जो
0: वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना? तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें?
1: हाँ।
0: कोई इंसान है जिसका प्यार उसे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे तो प्यार है।
1: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायर, हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
0: हाँ यार
1: दूसरी की हो गई वो,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है?
0: करेक्ट।
1: तो उसपे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी, इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हैं मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है। तब मैंने उस पर लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज, और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम? कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहे हो या
1: भीगे भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
0: बट वो मुझे याद नहीं
1: याद
0: आ रहा
1: है। नहीं
0: आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
1: है
0: ना,
1: लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
0: दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो, अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है, लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजे भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे आनंद भाई,
1: आरजे भाई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: तो मैंने ये नाम रखा है यार। नहीं आएगा तो भी वो आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका।
1: चलिए,
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में।
0: जैसे जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, उस पर मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती है क्यों? अरे पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूं तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: बहुत ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहना नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना। अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक जो तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपना बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपना बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हदी थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हदी थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हद नहीं।
1: क्या बात है। थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट? और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत की और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें। हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मर जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबन करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
0: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि। दर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को, दिल्ली रोड जूडियो के सामने, कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
5: मुरादाबाद 89.6 FM।

नमस्कार दोस्तों, गुरुवार की इस खूबसूरत शाम में आपका अपना अखिल हाजिर है। एक बार फिर लेकर आया है वो शो जहां बात सिर्फ दिल की होती है, दिल से दिल तक अखिल संग। गुरुवार है भाई, मंडे की थकान निकल चुकी है, फ्राइडे की खुशी अभी आने वाली है और थर्सडे कह रहा है भाई थोड़ा और रुक जा, वीकेंड बस आने ही वाला है। तो आज की शाम होगी मस्ती, शायरी, कुछ मज़ेदार बातें, एक खास ट्रिब्यूट उस अभिनेता के नाम जिसने अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपनी दमदार अदाकारी से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी नाना पाटेकर जी की और साथ ही साथ दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी रिलेटेड आज बातें होंगी। तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और दिल खोल कर सुनिए।

0: हेलो,
1: मेरे साथ डांस करोगे?
0: नहीं।
1: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी आप जो गाना सुन रहे थे, मैंने देखा जब, मूवी है क्रांतिवीर और गाना गाया है अमित कुमार, सपना मुखर्जी, सुदेश भोसले और पूर्णिमा जी ने। इस मूवी के मैं कहता हूँ कि इस म्यूज़िक के जो डायरेक्टर हैं वो है आनंद मिलन साहब, और जो लिरिक्स लिखी हैं वो लिखी हैं समीर साहब ने। ध्यान रखिएगा, आज कुछ एक क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप भी उसका जवाब देंगे। दोस्तों, जब भी हम कभी गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा चेहरा जो होता है ना, बिल्कुल एकदम स्टैटिक हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि बस पहुंचना है, कुछ सोच रहा होता है और ना ही कोई एक्सप्रेशन चल रहे होते हैं। तो एक सर्वे में कहा गया है कि अगर आप ऐसे समय पर तरह तरह के चेहरे बनाएं तो एक आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है चेहरों की, और वो बहुत ही अच्छी लाभदायक रहती है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि चेहरा जब बनाते हैं ना, सामने वाला पता नहीं क्या समझे और क्या सोचे, तो उसकी फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, उसे क्या पता कि आप तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए अपने कॉलर से बात करते हैं, लेते हैं शो की पहली कॉल और पूछते हैं क्या कर रहे हैं जनाब। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार जी।
1: ना शहर देखो, ना बयान देखो, ना शहर देखो, ना बयान देखो, खुदा का खुलौता निशान देखो, आँख खोल के देखो, रिहान भाई को देखो।
0: अच्छा, आँख खोल के रिहान भाई दिखेंगे हमें? क्या बात है रिहान भाई, आपने जो एकदम जो पर्सनल टच दे दिया इस शायरी में, बहुत ही बढ़िया। क्या अभी एकदम सोची थी या सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे कि आज तो मैं एफएम पे ये वाली शायरी बोलूंगा?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था बहुत, अब हद तो हो गया, मैं अखिल भाई से बात कर ले।
0: चलिए बढ़िया बढ़िया। और कैसा रहा आज आपका दिन, क्या क्या किया आज आपने?
1: बहुत अच्छा किया है। वैसे तो मैं कहीं बिलासपुर था कल, तो बिलासपुर सफर में गाना सुन तो आए थे बस में, मैं लगा था गंबरा गाना।
0: तो बस के ड्राइवर से कही ये बात आपने या कंडक्टर से कही?
1: जी जी बस जो जो बस चला रहा था उससे कही थी मैंने।
0: और अगर बगल में आपके कोई आशिक बैठा हो तो बिल्कुल ही एकदम कहते हैं, वो कह रहा होगा अरे रिहान भाई आप अभी तक इस बस में क्यों नहीं चढ़े थे?
1: अरे कल बना रहा था रील इंस्टाग्राम की।
0: रेल नहीं, रील।
1: हाँ मैं बना रहा था वीडियो, तो दो चार लड़के आ गए थे मेरे साथ बिलासपुर पे।
0: अच्छा अच्छा
1: मैंने पार्क पे वीडियो बनाई तो क्या भाई रिहान भाई तुम वीडियो बना रहे हो तो हमें भी ले लो, नहीं हमें तो आपको भी ले लेना भाई।
0: क्या बात है क्या बात है भाई साहब,
1: मैंने इंस्टाग्राम पे डाली फिर तो खुश खुश होने लगे।
0: बहुत बढ़िया। उनसे कहना मेरी रील भी इतनी दूर तक जाती है जितनी दूर तक रेल जाती है।
1: जी जी जी जी मैं लाइव और कमेंट और फॉलो जरूर करना।
0: हाँ, तो हाथ ऐसे मौके पे ना, जब कहे कोई कि आप भाई मुझे अपनी रील में ले लो या अपनी वीडियो में शामिल कर लो, उससे कहो तभी कि पहले तुम मुझे फॉलो करो, तभी तो मैं तुम्हें अपने साथ वीडियो में लूंगा।
1: जी जी जी अरे आपके नाम की काय के नाम से है आपकी आईडी इंस्टाग्राम पे?
0: मेरी अखिल एरन के नाम से है।
1: अच्छा अच्छा जी तो मैं नाम की रिहान 1443 नाम से आईडी।
0: चलिए रिहान जी, 1443 के साथ आपको ढूंढा जाएगा।
1: जी जी
0: तो बस आप बताइए, और कौन सा आप कहते हैं दिल से कोई ऐसी दिल की बात जो आज कहना चाहें, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें, जरूर कोई बताएं।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, और जैसे मौसम चेंज हो रहा है,
0: हाँ जी,
1: थोड़ा समझ के अपना ध्यान रखें, और अंदर कमरे घर में सोए और बाहर न सोए, जो ओस पड़ रही है खांसी जुकाम ना हो।
0: आपने ये बात बोलते हुए कितनी बार खांस दिया था?
1: अरे मेरी तबीयत खराब हो गई, दवा लेकर आया था सुबह में।
0: ये 5 बार खांस चुके हैं अब तक जितनी बार हमसे बात हुई है आपकी इस बारे में।
1: हाँ सही करो, तबीयत खराब हो गई डगरी।
0: तो अब आप दवाई लीजिए, बताइए कौन सा गाना है जो दवाई की तरह काम करेगा आपके लिए।
1: जी उसका नाम है सिर्फ तुम,
0: सिर्फ तुम।
1: गाने बोला है जिंदा रहने की तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर है सनम।
0: बस अब मुझे पता चला आपको दवाई की क्यों जरूरत है।
1: हाँ जी फिर अगले हफ्ते मिलेंगे फिर।
0: ठीक है रिहान जी, अपना तब तक आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें और इस गाने को एंजॉय करें, और बहुत प्यार इसी नींद सोए।
1: ओके ओके सर।
0: ओके रिहान जी। तो जो रिहान जी आज हमारे साथ जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये उनका गाना जो है ना बहुत ही दिल के करीब है, मगर इस गाने तक पहुँचते पहुँचते रिहान भाई भी आज 6 या 7 बार खास चुके थे, तो उनको ना पहले अभी दवाई की जरूरत है, उसके बाद इस गाने की भी। तो चलिए श्रोताओं, ये गाना सुन के हम आते हैं। अगर आपकी भी कोई दिल की बात है या कोई दिल से निकली हुई आवाज़ है तो ज़रूर 9837896896 पर कॉल करें या फिर मैसेज करें। शाम ढलती रही, दिल मचलता रहा, कोई यादों में चुपके से चलता रहा, बात करने को तो दुनिया बहुत थी मगर दिल बस एक शख्स को ढूंढता रहा। तो चलिए करते हैं इस गाने के बाद आपसे खूब सारी ढेर सारी बात। और हाँ दोस्तों, एक सवाल जाते जाते आपके लिए भी है, अगर आपको आज किसी एक इंसान को बिना नाम लिए एक मैसेज भेजना हो तो क्या कहेंगे? मैसेज कीजिए और हो सकता है आपका मैसेज हम पढ़े तो पूरे शहर के सामने ये बात पहुँचे और वो भी चुपचाप कह दे रिप्लाई में कि यार थैंक यू। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और मुलाकात करते हैं इस मुलाकात के बाद।

0: बिल्कुल सही कहा, एक मुलाकात तो जरूरी है सनम। वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ बातें हो रही हैं खूब सारी दिल की और दिल तक पहुंच रही हैं सर। वैसे एक बात बताइए, प्यार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है, जानू, बाबू या फिर तुम नाराज हो क्या? और इसका जवाब आता है नहीं। लेकिन भाई साहब, उस नहीं के पीछे जो 500 पन्ने की कहानी होती है ना, वो सिर्फ एक पति या एक बॉयफ्रेंड ही समझ सकता है। तो चलिए करते हैं अपने एक और लिसनर से बात और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? नमस्ते जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: शमा परवीन।
0: शमा परवीन जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: सही कट रही है आपकी जिंदगी? आप मुरादाबाद में रहती हैं या आसपास कहीं? कहाँ से बात कर रही हैं आप? आसपास से बात कर रही हैं आप? क्या करती हैं शमा परवीन जी आप?
1: तो कुछ नहीं, घर ही में रहती हूँ। काम धंधा यही, खाना बच्चों को खाना बनाना, खिलाना पिलाना, यही काम है।
0: कौन सा ऐसा बच्चा है जो बहुत शैतान है और जब तक आप उसे डांटती नहीं हो खाना नहीं खाता?
1: छोटे छोटे बच्चे हैं।
0: छोटे छोटे बच्चे हैं, सुन लेते हैं आपकी एक बार में? नहीं सुनते?
1: सुनते हैं।
0: या आपको भी उनकी तरह बच्चा बन जाना पड़ता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मियाँ जी जो हैं कभी कभी बच्चों को संभालते हैं? यस। मियाँ जी भी बच्चों को संभालते हैं या नहीं?
1: संभालते हैं।
0: बच्चे संभालते हैं। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं बता दो।
0: क्या बात है यार, ये तो आपने बहुत अच्छी बात हाँ तो आज पूछ लिया आपने, जिसके लिए डेडिकेट करना था उसी से पूछ लिया कि आप ही बता दो गाना कौन सा सुनना चाहते हो।
1: बता दो
0: ये शर्मा रहे। शादी को कितने साल हो गए शमा परवीन जी?
1: शादी को तो हो गए काफी साल, रहने वाली तो मैं पटना की।
0: तो ये अब इतने सालों से शर्मा ही रहे हैं मियाँ जी? तो उन्हें बता दीजिए आपने एफएम मुरादाबाद पे कॉल लगाया जहाँ पे गाने सुनाते हैं फरमाइश के। तो कौन सा आप बताइए, अभी आप कौन सा गाना कह रही थी? कह रही कौन सा गाना सुनना चाह रही थी अभी आप?
1: दिल।
0: और आपने उसके बाद बताया था दिल पे चलाई छुरियां। तो कोई बात नहीं, वो नींद में आप छुरियां मत चला देना, बस गाना ही सुना देना दिल पे चलाई छुरियां। चलिए शमा परवीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके शमा परवीन जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ी थी शमा परवीन जी, जो कह रही थी कि अभी तो जो है मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, थक गए हैं पूरे दिन काम करके, तो एक गाना उनके लिए भी डेडिकेट कर दीजिए तो ज़रूर, क्यों नहीं। जब आप पूरे दिन इंसान इतना काम करता है और थक जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसको सुनने के लिए चाहिए। हाँ, तो इससे अच्छा है कि वो गाना ही सुन ले, बाकी तो लोग आप सब समझ ही गए। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और आज हम याद करते हैं अपने हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार को जिनकी आवाज़ सुनते ही करेक्टर की ताकत महसूस होती है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने भी, और आज ही नाना पाटेकर जी जो हैं उनका स्वर्गवास हुआ है। और वो एक ऐसा अभिनेता हैं जिसने सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोले, मतलब उनके डायलॉग को लोगों ने महसूस किया है। उनकी एक्टिंग में खास बात यही रही कि कम शब्द लेकिन बहुत ही ज़्यादा असर, चाहे सीरियस करेक्टर हो या फिर इमोशनल रोल या फिर कॉमेडी, उन्होंने हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी है और एक

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि .in, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि .in पर जाकर।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और सर आपको भी लग रहा होगा कि कुछ जो बातें हो रही हैं वो आज हमारे बीच जो भी हो रही हैं खूब थोड़ी सी मस्ती की और थोड़ी सी यादगार बातें चल रही हैं। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं दुनिया की भी। और दोस्तों दुनिया में टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में रहती हैं। आज की शाम का हमारा वर्ल्ड अपडेट रहेगा शॉर्ट और थोड़ा सा सिंपल। पहला तो रहेगा दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डेवलपमेंट और रेगुलेशंस पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन और ट्रेड को लेकर बड़े देशों की नीतियां दुनिया के मार्केट पर असर डालती हैं। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेकर कंट्रीज लगातार प्रिपेयरनेस और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन पर काम कर रही हैं। यानी दुनिया बदल रही है दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, लेकिन एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, वो है इंसानियत। और हाँ, यही बातें हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा और आगे भी लेके जाती हैं। तो चलिए अपने शो में चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं अपने नए लिसनर से, पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए।
0: बढ़िया सर, बढ़िया। क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: शाकिर बोल रहे हैं, मियां कॉलोनी से।
0: शाकिर जी, क्या करते हैं आप? पूरा दिन कैसा गया आज का?
1: बहुत बढ़िया गया, पीतल का काम करते हैं, थाली गिलास चम्मच सब बनाते हैं।
0: तो इस समय जैसे त्योहारों का टाइम पास में आ रहा है, सेलिब्रेशन का टाइम पास में आ रहा है, तो कैसा मार्केट में खूब काम है और आपको भी पूरा दिन लग जाता होगा?
1: जी हाँ, दिवाली का जो सीजन है ना, इस टाइम ये दिवाली का सीजन ही चल रहा है।
0: दिवाली के सीजन में खूब मतलब ऑर्डर्स पे ऑर्डर होते हैं। और
1: जी,
0: तो आप तो अमूमन अगर आप जैसे पीतल के बारे में अगर हमारे श्रोता सुनना चाहें तो आप कैसे बता सकते हैं कि पीतल की असली पहचान कैसे हो सकती है?
1: पीतल
0: कई मेल के होता है।
1: पीतल होता है तो कई मेल का पीतल भी है, सिल्वर भी है, उसके सबसे रेट अलग अलग होते हैं।
0: तो जो
1: क्वालिटी मतलब उसी हिसाब से पैसे का,
0: जैसी क्वालिटी वैसा रेट, यही कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और आज बताइए आप कोई ऐसी बात शाकिर जी जो आप दिल से आपकी निकली हुई हो और चाहते हो कि सभी सुने वो बातें। हेलो
1: जी, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपने एफएम रेडियो सुनते रहें, गुनगुनाते रहें
0: और मस्त रहें। बिल्कुल है ना,
1: मस्त रहें।
0: बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। तो कौन सा गाना जो है आप बहुत गुनगुनाते हैं और जो आपके पास है, थोड़ा से कहते हैं ना कि जब भी कभी आप अकेले होते हैं या फिर कुछ भी मन में चल रहा होता है तो वो गाना जो है आपके जहन में आ जाता है और उसे आप गुनगुनाते रहते हैं?
1: मूवी का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।
0: प्रेम प्रतिज्ञा, आपने भी प्रतिज्ञा ली है? नहीं ली है? कितने साल हो गए आपकी प्रतिज्ञा को, ये बताइए। तो कितने साल हो गए आप, शर्मा क्यों रहे? 95 में शादी हुई थी। और ये पिक्चर कब रिलीज हुई थी?
1: ये पिक्चर हुई थी।
0: बिल्कुल सही, ये आपकी शादी से सिर्फ 6 साल पहले रिलीज हुई थी। तो उसके बाद आपने प्रतिज्ञा ले ली, जैसी आपने पिक्चर देखी उसके बाद आपने प्रतिज्ञा ले ली है ना। चलिए शाकिर साहब बहुत बढ़िया, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे इस मूवी का?
1: इसे की उम्र प्यार की आग के साथ।
0: क्या बात है, मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित स्टारर हैं इसमें। और सबसे खास बात यह है कि किशोर दा ने इसमें गाना गाया। तो चलिए आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, अपनी प्रतिज्ञा को या फिर अपने दोस्तों को? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, घर में सब एकदम, यही तो एक कहते हैं ना दिल से बात निकली होती है, सब घर के लोग आसपास होते हैं और उस समय एफएम सुनने का मजा ही कुछ और होता है।
1: सारे दिन एफएम चलता है,
0: सारे दिन एफएम चलता है तो किसी दिन रेडियो आवाज तो नहीं देता अंदर से कि भाई साहब थोड़ा सा तो आराम दे दो मुझे। बस आप उसे पानी मत पिलाना बीच में, कभी आपने कहा आपको भी प्यास लग रही हो आपने उसे भी पानी पिला दिया। तो चलिए शाकिर जी, जरूर ये आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और पूरे परिवार को डेडिकेट करते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरीके से छोटी हंसी दी है आपने, छोटी सी मुस्कान दी है मगर बहुत ही अच्छी मुस्कान दी है आपने, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़े थे शाकिर जी। कहते हैं ना कभी कभी जो मुस्कान होती है ना, छोटी सी भी अगर आपकी हंसी होती है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कह जाती है। इसी तरीके से उन्होंने भी अपने दिल की बात कही, और कितना बढ़िया गाना उन्होंने एक डेडिकेट किया है अपने को और अपने परिवार को, और हमने हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को। तो चलिए इसका आनंद लेते हैं। हाँ, आपकी भी कोई बात है, कोई भी ऐसी जो कहते हैं ना दिल से थोड़ी सी करीब, थोड़ी सी भी करीब होगी ना वो भी चलेगा। 9837896896 पे ज़रूर बताएं। सीट बेल्ट नहीं खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए, मतलब जब तक आपका डेस्टिनेशन ना आए तब तक सीट बेल्ट ना खोलें। थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, और ख़ास तौर पे जब आप दिल्ली रोड पे मानसरोवर से प्रकाश नगर चौराहे की तरफ आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा बीच में कंजक्शन है, क्योंकि सड़क का काम चल रहा है तो वो बीच में वन वे हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आएँ और बहुत ही संभाल के चलें, क्योंकि सड़क पे सड़क के साथ गिफ्ट करा हुआ गड्ढा बहुत ही देख के चलना पड़ेगा साहब, उसे गिफ्ट को अपने साथ ना लेके जाएं और बड़े प्यार से गाड़ी ड्राइव करें। तो चलिए मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां हिसाब नहीं होता, कौन कितना अपना है इसका कोई जवाब नहीं होता। और एक छोटी सी बात, कभी कभी किसी इंसान को अपनी सलाह नहीं चाहिए होती है, उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो कहे मैं हूं ना, बता क्या हुआ। तो चलिए साहब, खड़ी की सुइयां हो गई हैं 10। हाँ हाँ, 10 बज गए हैं और हमारे चलने का भी सफर हो गया। मगर चलने से पहले एक लास्ट कॉल लेते हैं और बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका
1: भाई साहब? नमस्कार। पहले आपको
0: नमस्कार जी। नमस्कार,
1: हमारा नाम है प्रभात सैनी, मझौली मुरादाबाद से।
0: प्रभात सैनी जी, क्या बात है, आप जो है हम आपसे मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार बात हो रही है प्रभात जी, है ना?
1: नहीं, मेरी कम से कम पांचवी छठी बार बात हो रही है। याद नहीं रहती आदमी को हमसे बात करा हुआ।
0: अच्छा। मुझे तो लग रहा था इस पे भी अभी एक शायरी निकल के आ जाएगी। जिंदगी जिंदगी छोटी है मगर यादें बड़ी हो सकती हैं। जिंदगी छोटी है मगर यादें बड़ी हो सकती हैं। चेहरे हजार मिलेंगे मगर पहचान कुछ ही होती है। इसलिए रिश्ते संभाल कर रखिए, क्योंकि जिंदगी में असली दौलत लोग ही होते हैं साहब।
1: इसका एहसास मैं भूल चुका था मगर आपने याद दिला दिया। इसका एहसास मैं भूल चुका
0: क्या
1: था
0: बात है?
1: आपने याद दिला दिया। जो खोया हुआ था मेरा प्यार वो वापिस लौटा दिया।
0: क्या बात है साहब, अब तो आपके पास वापस लौटा दिया है तो फिर तो पार्टी तो बनती है।
1: अरे आप जब कहो।
0: तो क्या कर रहे हैं इस समय आप प्रभात जी, आप कर क्या रहे हैं इस समय?
1: इस टाइम आपको मैं बताऊं?
0: हाँ हाँ, हकीकत।
1: दुमंजली पे बैठा हूँ, बस आपसे बात कर रहा हूँ।
0: दुमंजली पे बैठे हैं आप, हवा चल रही है नहीं चल रही है?
1: हल्की स्लो मौसम है, अब तो मौसम भी नॉर्मल होने लगा, तो कोई ना गर्मी का एहसास।
0: तो प्रभात जी एक बात बताइए, अब आप दुमंजली पे बैठे हैं ठीक है ना, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा किसी को, कोई पड़ोसी अड़ोसी आपका छत पे से झांक रहा होता है आपके, कहते हैं ना इधर उधर झाका झाकी ना कर, तो कभी देखा आपने कभी ऐसे किसी पड़ोसी अड़ोसी को?
1: देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको भाई साहब।
0: हाँ जी प्रभात जी,
1: हमें अपनी जिंदगी पे जीना चाहिए, दूसरों को देखने की मोहलत ही न देनी चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात
1: क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
0: तो मतलब
1: जिंदगी मिली छोटी सी बस।
0: सर ये जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये एकदम अचानक वाले होते हैं, इसमें तो कोई इंटेंशनली नहीं देखता, मगर कभी हो जाता है ऐसे। आप छत पे चढ़े हो और आप देख रहे हो भाई साहब आपका पड़ोसी भी आपको झांक रहा है। तो मतलब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, झाका झुकी नहीं हुई है
1: ना? होती है, क्यों नहीं होती है, हर जगह होती है, हर जगह होती है।
0: क्या बात है, तो आज आपको पता चला, जैसे आप अभी बात हुई थी कि नाना पाटेकर साहब के ऊपर बातें चल रही हैं, तो आपको उनका कोई ऐसा, कहते हैं ना कोई एक ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा सीन जो आपको थोड़ा जहन में रहता है जब भी नाना पाटेकर साहब का नाम याद आता है, या मजनू भाई याद रहते हैं आपको?
1: देखो मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% आदमी नाना पाटेकर के डायलॉग ना याद रखे, अब तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
0: क्या बात कही आपने, बहुत
1: डायलॉग ऐसे हैं, आदमी दुनिया खत्म हो जाएगी उनके डायलॉग खत्म नहीं होंगे।
0: एक वो वाला डायलॉग मुझे पूरा आता तो नहीं है, मगर वो मेरे को हमेशा याद आता है, वो ये किसका खून है, ये तेरा खून है मेरा खून, मिला इसे मिला,
1: मिला हिंदू का इधर रख मुसलमान का इधर रख, अब पता मिला क्या, अरे किसका, कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का।
0: दमदार एक्टर था वो, मतलब उस एक्ट को तो मैं हमेशा जहन में ही रहता है वो। अगर नाना पाटेकर साहब आ जाए ना आपके दिमाग में, आपकी याद में आ जाए एकदम, या आपके बातों में आ जाए, तो वो डायलॉग तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आना चाहिए, 100% आना।
1: एक यही डायलॉग ना, बहुत डायलॉग है ऐसे जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, आज हिंदू मुसलमान ये सब बेकार चीज है, खून तो हमारा एक ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही, और यही बात उन्होंने स्टेज पे किस तरीके से इस डायलॉग को, बहुत सही बात कही। तो चलिए, आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आज इस याद में नाना जी का, पाटेकर जी का एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें सभी श्रोताओं को? और अपने
1: हमें तो गाने तो सभी अच्छे लगते हैं, एक इसमें रक्षाबंधन का गाना वही बढ़िया, मगर हमें पीले पीले मेरे राजा जो पार्टी में आदमी गाना गाते राजकुमार के साथ।
0: बिल्कुल सही, मतलब वो गाना भी आपने बिल्कुल ऐसा याद दिलाया कि वो गाना सभी का एक तरीके से कहते ना यादगार
1: जो
0: गाना।
1: नेता हो उसके लिए भी है।
0: हाँ
1: वो एक हम हजारों आदमी जो भी उनके मिले थे, 8-10 जने पार्टी बन रही है, वो
0: हाँ जी हाँ जी
1: गाना। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आदमी पी रही है ना पीता, उससे मतलब नहीं। और
0: हाँ
1: एक दोस्ती होती है, मिलते हैं, हमारे पुराने दोस्त आ गए, कल हमारे दोस्त आए, हम मिले, तो मजा आता है कुछ।
0: बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो चलिए, चलते हुए इतनी अच्छी बात हुई है आपसे, और ये गाना डेडिकेट करते हैं
1: एक
0: सभी को।
1: शायरी और हो जा, मैं
0: एक
1: थके भाई,
0: शायरी
1: बस केवल
0: तो
1: आप सुनाओ पहले।
0: मतलब ये तो वो हो गई कि क्या कहते हैं भाई साहब, आप सुनाओ, आप अपना वो पेट्रोल डालो और हम किक मार देते हैं स्कूटर में।
1: ना, आदत ही ऐसी है मेरी। मैं पहले आप पल्ले वाले आदमी सुनना चाहता हूँ कि कितना दम है सामने वाले में, फिर हम देखते हैं हमें कितना दम है।
0: शाम ढलती रही, दिल मचलता रहा, कोई यादों में चुपके से चलता रहा। बात करने को तो दुनिया बहुत थी, मगर दिल बस एक शख्स को ढूंढता रहा।
1: है ढूंढना छोड़ दिया है मैंने, सब कुछ मिल चुका है। ढूंढना छोड़ दिया है मैंने, सब कुछ मिल चुका है। जितना चाहता था खुदा ने मुझे उत्तर दे दिया है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आपको जितना चाहते थे आप, उतना आपके पास आ गया है।
1: देखो मैं बताऊं, मेरी शादी 2013 में हुई थी, 6 साल तक मेरे कोई बच्चा ना हुआ। 2019 में भगवान ने मेरी लड़की दी, आज तो मैं देखो उसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी मैंने।
0: बिल्कुल सही। इसके ऊपर
1: हाँ, तो देखो
0: एक मूवी भी है जो आपने बात बोली है, मैं आपको बताऊंगा कभी कि वो मूवी बहुत ही ऐसी ही जैसा आप बता रहे हैं वैसी ही एक उस पर एक स्क्रिप्टेड मूवी है, बहुत अच्छा लगा।
1: देखो, मेरे कोई लड़की बच्चा ना होता तो मैं आदमी क्या कहते हैं।
0: चलिए सर, इसके तो
1: हाँ,
0: मैंने आपने अपने शुरुआत में ही कहा था, जिसको जो कहना है, जिसको जो झांका करनी करते रहना जी, अपना काम करते रहे, है ना? कहा था, नहीं कहा था आपने, याद है आपको? तो उस
1: यही कहता
0: बातों
1: हूँ
0: पे
1: मैं।
0: बात ना करके अब हम आगे चलते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं, और इस
1: ठीक है,
0: रात को बहुत ही प्यारे नोट पे खत्म करते
1: नमस्कार
0: हैं।
1: भाई साहब, बार बार नमस्कार, आप हमें
0: नमस्कार
1: मौका दे
0: प्रभात
1: रहे
0: जी, नमस्कार,
1: हैं,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे, प्रभात जी कह रहे थे कि आप ही को याद नहीं है। मैं तो आपके साथ जुड़ चुका हूँ 5-6 बार। तो हाँ जी साहब, 5 क्या, आप 6 क्या, 7 बार जुड़े हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, आज की शाम हमने की थर्सडे वाली मस्ती, दिल की बातें और शायरी भी, हंसे भी, और याद किया एक शानदार अभिनेता को जिनकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता। तो मैं अखिल आपसे यही कहूंगा कि थर्सडे को बोरिंग मत बनाइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, किसी अपने को फोन कीजिए और कहिए भाई जिंदगी चल रही है, चलो इसे थोड़ा एंजॉय करते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं अखिल लेता हूँ आपसे इजाजत, और मिलते हैं फिर एक नई शाम, नई कहानी और नई शायरी के साथ। खूब सारी मस्ती करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे 9 बजे, दिल से दिल तक अखिल संग। तो गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, एंड कीप स्माइलिंग जी, कीप स्माइलिंग।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगी आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: जहां बनती हैं ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।